नमस्कार, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आज दिन है बुधवार, शक संवाद 1948, असर महीने की आज तीसरी तिथि है। साथ ही अंग्रेजी सन 2026 जून महीने की आज 24वीं तारीख है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हो चुके हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं मीना स्वागत करती हूँ आज की पहली सभा में।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमरीका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, लेके गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे देते हैं आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही समय में यानी कि सुबह 6:10 पर आप आनंद ले पाएंगे भक्ति गीतों का। 6:30 पर आप सुन पाएंगे महिलाओं पर केंद्रित फिल्मी गाने।

सुबह 7 बजे आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7:05 पर आपको आज के दिन की विशेषताओं के बारे में जानकारी देंगे। सुबह 7:30 पर आप सुन पाएंगे युवा पर आधारित कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत करेंगी अंकिता पॉल।

सुबह 8 बजे आप सुन पाएंगे समाचार प्रभात, रिले की जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप आनंद ले पाएंगे कुछ देशभक्ति गीतों का। सुबह 8:30 पर रिले की जाएंगे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। सुबह 8:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम शुरू की रंगोली। सुबह 9 बजे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले की जाएंगे पुआर आंचलिक बातरी।

सुबह 9:15 पर स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को आरंभ करते हुए सबसे पहले आपको सुनवाएंगे खेलमा कार्यक्रम के अंतर्गत खेलमा भक्ति गीत जेतेलिन जेते और उनके साथियों की आवाज में। जायोलियन फोइतोंग और उनके साथियों के गाए रांगखोल भक्ति गीत आप सुन पाएंगे सुबह 9:25 पर। सुबह 9:35 पर जयंतिया कार्यक्रम के अंतर्गत जयंतिया भक्ति गीत आप सुन पाएंगे मेलम भलंग प्रंगे और उनके साथियों की आवाज में। सुबह 9:45 पर ब्याते कार्यक्रम के अंतर्गत ब्याते भक्ति गीत आप सुन पाएंगे जारलेनी ब्याते और उनके साथियों की आवाज में।

सुबह 10 बजे से आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से शाम के 5 बजे तक। लेकिन उसी बीच आप सुन पाएंगे दोपहर 12 बजे हिंदी में समाचार, दोपहर 1 बजे हिंदी में समाचार, दोपहर 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार और शाम 4 बजे हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थी आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आइए अब बढ़ते हैं महिलाओं पर केंद्रित फिल्मी गानों के सफर की ओर। सबसे पहला गीत हम आपको सुनवाएंगे रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से। इस गीत को गाया है रूप कुमार राठौड़ ने।

महिलाओं पर केंद्रित फिल्मी गानों के इस सफर को आगे बढ़ाते हुए अगला गीत आइए सुनते हैं, जब तक है जब वी मेट फिल्म से। इस गीत को गाया है मोहित चौहान ने।

श्रोताओं, हम आ चुके हैं महिलाओं पर केंद्रित फिल्मी गानों के आखिरी सफर में। आइए इस कार्यक्रम के आखिरी गीत हम सुनते हैं जब तक है जान फिल्म से। इस गीत को गाया है नीति मोहन ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही महिलाओं पर केंद्रित फिल्मी गानों का ये सफर यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार, लेके जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आज का पोएम ऑफ द डे।
4: नमस्ते, मेरा नाम ईशान है। मैं कक्षा 4 रीगल वैली स्कूल में पढ़ता हूँ। आज मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। कविता का नाम है नीम। लहरा राता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना ने जताता नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो, कितने रोग भगाता नीम। चले प्रदूषित वायु कभी तो, उसको शुद्ध बनाता नीम। करवे तन में मन को मीठा, रखना हमें सिखाता नीम। हवा चले तो झूम झूम के, सबका मन बलखाता नीम। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। हरीश निगम।
3: आइए आरंभ करते हैं आज का दिन और जानते हैं आज के दिन की विशेषताओं के बारे में।

श्रोताओं, आज 24 जून है। आज के दिन देश विदेश के इतिहास में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। जानेंगे उन्हीं कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, साथ ही जानेंगे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ, साथ ही जानेंगे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। शुरुआत करते हैं आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। फ्रांस ने 1793 में पहली बार रिपब्लिकन संविधान को अपनाया। आज के दिन डाक एवं टेलीग्राफ विभाग ने 1963 में राष्ट्रीय टेलीकास्ट सेवा की शुरुआत की। श्रोताओं, ये थी आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आइए अब जानते हैं उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ। प्रसिद्ध भारतीय लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े का जन्म 1863 में हुआ था आज के दिन। आज के दिन प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ अमर शहीदों में से एक दामोदर हरि चापेकर का जन्म 1869 में हुआ था आज के दिन। आज के दिन प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, संगीतज्ञ एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक ओंकार नाथ ठाकुर का जन्म 1897 में हुआ था आज के दिन। श्रोताओं, ये थे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ। आइए अब जानते हैं उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का निधन वर्ष 1864 में हुआ था आज के दिन। पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रद्धाराम शर्मा का निधन 1881 में हुआ था आज के दिन। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का निधन वर्ष 1980 में हुआ था आज के दिन। श्रोताओं, ये थे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा।

श्रोताओं, आज के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। हर वर्ष 24 जून को यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस मनाया जाता है। यह दिवस महिलाओं के कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को में योगदान की सम्मान देने तथा निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में उनकी समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 में की थी। आज भी विश्व स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व शीर्ष राजनीतिक पदों पर उपेक्षाकृत कम है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कई देशों में अभी तक कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख नहीं रही है और संयुक्त में स्थिति प्रतिनिधियों तथा राजदूतों के रूप में महिलाओं की संख्या अभी भी सीमित है। ऐसे में ये दिवस समान अवसर और समयवशी नेतृत्व की आवश्यकता को रेखांतरित करता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस 2026 का मूल्य संदेश यह है कि महिलाओं की समान और सार्थक भागीदारी के बिना प्रभावी, समावेशी और शांतिपूर्ण वैश्विक कूटनीति संभव नहीं है। ये दिवस युवा महिलाओं को कूटनीति, विदेश सेवा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है।

श्रोताओं, आज के दिन को भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान साधक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। उनका जन्म आज के दिन 1897 को गुजरात के जहाक गांव में हुआ था। अत्यंत साधारण और आर्थिक रूप से संघर्षपूर्ण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिभा, कठोर साधना और संगीत के प्रति समर्पण के बल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जगत में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने प्रसिद्ध संगीताचार्य विष्णु दिगंबर पलुष्कर का से संगीत की शिक्षा ग्रहण की और ग्वालियर घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर केवल एक महान गायक ही नहीं बल्कि संगीत शास्त्री, शिक्षक और लेखक भी थे। उनकी गायकी में भाव, अभिव्यक्ति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। वे श्रोताओं को केवल सुरों से नहीं बल्कि गीत के अर्थ और भावनाओं से भी जोड़ देते थे। उन्होंने लाहौर के गंधर्व महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में कार्य किया तथा बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संगीत संकाय के प्रथम डीन बने। उन्होंने संगीत पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखा है, जिनमें संगीतांजलि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारतीय संगीत के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें 1955 में पद्मश्री तथा 1963 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी जयंती हमें ये प्रेरणा देती है कि कठिन परिस्थितियां भी उस व्यक्ति को मार्ग नहीं रोक सकता जिसके भीतर प्रतिभा, परिश्रम और अपने लक्ष्य के प्रति अद्भुत समर्पण हो। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

श्रोताओं, आज के दिन को भारत के छठे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटागिरी वीवी गिरी जी की पुण्यतिथि के रूप में भी मनाई जाती है। उनका जन्म 10 अगस्त 1994 को ओडिशा के ब्रह्मपुर में हुआ था। उन्होंने आयरलैंड के डब्लिन में कानून की पढ़ाई की, जहां वे आयरिश स्वतंत्रता आंदोलन से भी प्रभावित हुए। भारत लौटने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर वकालत छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ मजदूरों के अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक बने और देश भर के श्रमिकों की आवाज़ को मजबूती से उठाया। स्वतंत्रता के बाद वीवी गिरी जी ने कई महत्वपूर्ण पड़ाव पर सेवा दी। वे श्रीलंका में भारत के पहले हाई कमिश्नर बने, केंद्रीय श्रम मंत्री रहे और उत्तर प्रदेश, केरला तथा मैसूर के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 1967 में वे भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1969 में राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन के निधन के बाद उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला और बाद में स्वतंत्रता उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव जीतकर भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। वे भारत के इतिहास के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो स्वतंत्रता उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे। वीवी गिरी का जीवन सामाजिक न्याय, श्रमिक कल्याण और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने मजदूरों और उद्योगों के बीच सहयोग और संवाद का बढ़ावा दिया और भारत की श्रम नीतियों को मजबूत आधार प्रदान किया। देश के प्रति उनकी असाधारण सेवाओं के लिए उन्हें 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 24 जून 1980 को उनका निधन हो गया। आज उनकी पुण्यतिथि पर देश उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी, मजदूर नेता, कुशल राजनेता और जनहिताशी राष्ट्रपति के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

श्रोताओं, आइए अब आरंभ करते हैं आज का युवाओं पर आधारित कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रहेंगी अंकिता पॉल, और आज है हमारे गेस्ट रंगमिंग थंगमार। विषय रहेगा व्हेन क्रिएटिविटी मीट्स एंटरप्रेन्योरशिप।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हाफ लॉन्ग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका पसंदीदा युवा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप सुन पाते हैं हर हफ्ते बुधवार सुबह 7:30 पर। श्रोताओं, हर युवा के अंदर कुछ सपने होते हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं और कुछ ऐसे पैशन होते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग पहचान देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पैशन को एक पहचान में बदल पाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे ही युवा मिस्टर अमिंग, जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और मेहनत के दम पर ना सिर्फ अपना बिजनेस खड़ा किया बल्कि म्यूजिक और साउंड इंजीनियरिंग के प्रति अपनी दिलचस्पी को भी एक नई पहचान दी। म्यूजिक प्रोडक्शन से लेकर अपना स्टूडियो शुरू करने तक और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखने तक इनका सफर काफी इंस्पायरिंग रहा है। आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, इनके इंटरेस्ट, चैलेंजेस, स्टूडेंट लाइफ की कुछ यादें और वो अनुभव जो इन्हें आज के मुकाम तक लेकर आए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी हाफलोंग के स्टूडियो पे।
1: थैंक यू
0: जी। तो सबसे पहले आज हमारे कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, मैं आपसे यही चाहूंगी कि आप जरा अपने बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताइए।
1: जी, मेरा नाम अमिंग सांगचल है। एक्चुअली मेरा डॉक्यूमेंटेड नेम सांगमिंगथंग है, लेकिन वो थोड़ा बहुत लंबा है इसलिए अमिंग बोल के बुलाता है मेरे को। और मेरा पास प्रिंटिंग का एक बिजनेस चल रहा है, वहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह प्रिंट होता है, मोमेंटोस। उसके अलावा मैं आई एम अ सर्टिफाइड ऑडियो इंजीनियर, मैंने ऑडियो इंजीनियर और डिप्लोमा कोर्स किया था मुंबई से।
0: जी जी, तो आपने जैसे हमें बताया है कि आपका खुद का एक बिजनेस आपने किया है, मतलब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पे है, तो ये जो सफर है इसकी शुरुआत कैसे हुई आप?
1: एक्चुअली पहले मैं साउंड के बारे में बताना चाहूंगा। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी बोलेगा, क्योंकि हाफलोंग पे मैंने अभी तक कोई मतलब साउंड के इस तरफ कोई भी परसू नहीं किया। आई थिंक आई एम द ओनली वन। तो स्कूल लाइफ से मेरे को बहुत शौक था, लाइक आई वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। लेकिन एक दिन कॉलेज डेज पे जब मैं हम लोग एक जेम रूम पे जेम किया था, वहाँ मैंने मेरा एक मुलाकात हुआ एक ऑडियो इंजीनियर के साथ। तो उसने मेरे को बात किया, हम लोग जब गपशप मारा था उसने मेरे को बताया, अगर तुम लोग को सक्सेस होना है और कमाना है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर अ टेक्निकल।
0: जी
1: तो
0: जी।

0: टाइम से मैंने सोच के लाइक वो पर्टिकुलर वर्ड मेरा दिमाग पे था, तो उस टाइम में मैंने हाँ ऑलमोस्ट म्यूजिक तो बंद तो नहीं किया, लेकिन म्यूजिक छोड़ के मैंने इसका टेक्निकल लाइन ऑडियो इंजीनियर तरफ मैंने फोकस करके अभी तक वही किया है।
1: जी, तो आपका म्यूज़िक का जो फील्ड है वो एक अलग फील्ड है, आपका जो साउंड इंजीनियरिंग का फील्ड है। फिर एक तरफ जो आपने जो बिज़नेस कहा है वो टी शर्ट प्रिंटिंग या फिर मेमेंटो प्रिंटिंग, वो सब एक अलग फील्ड है। यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट जो जर्नी है, मैं वो ज़रा जानना चाहूँगी।
0: एक्चुअली वो एक सेइंग्स होता है, नो वन पेज फॉर म्यूजिक।
1: जी
0: आपको आप लोग को भी पता होगा कि म्यूजिक से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग साउंड ट्रैक बनाता है, 2-3 रात हम लोग कुछ मेहनत करता है और 2-3 हज़ार मिलता है।
1: जी।
0: रिकॉर्डिंग एक सेशन में रिकॉर्डिंग होगा, गाना का रिकॉर्डिंग 2 हज़ार में ख़त्म हो जाता है, तो एक हफ्ता का महीने कितना होता है, 3 हज़ार। तो
1: जी
0: उसमें सर्वाइव करना आजकल का दुनिया में मुश्किल है। और जैसे कि हमारा बड़ा बड़ा शहर में जो हम लोग जो ऑडियो इंजीनियर स्टूडियो वगैरह वो सब गाना का वजह से यूट्यूब थ्रू से वो लोग रॉयल्टीज मिलता है, हाफ लोग पे हम लोग नहीं मिलता है। वन टाइम पेमेंट हम लोग को 1,000-2,000 जो मिलता है बस वही मिलता है। इसलिए थ्रू म्यूजिक में हाफ लोग के लिए हमारा प्रेजेंट सिचुएशन में म्यूजिक सर्वाइव करना मुश्किल है, फैमिली ब्रोनअप करना मुश्किल है। तो आई
1: जी
0: आई थॉट ऑफ मैंने क्या सोचा, क्यों ना एक बिजनेस स्टार्ट करे हाफ लोग पे। उस टाइम टी शर्ट्स का कोई प्रिंटिंग स्टेशन नहीं था, मोमेंटोज वगैरह जो कॉरपोरेट गिफ्ट वगैरह वो प्रिंटिंग
1: जी
0: वो वाला, क्योंकि बिफोर दैट मे बी बीकॉम कॉमर्स कॉलेज भी किया था, तो बिजनेस का भी थोड़ा शौक था मेरे को,
1: जी
0: इसलिए मैंने स्टार्ट किया बिजनेस।
1: जी, तो आपने जैसे ये शुरू किया है क्योंकि आपको एक फैमिली सपोर्ट का नीड था उसके वजह से।
0: हाँ
1: तो अभी कैसा चल रहा है आपका ये जर्नी?
0: फिलहाल अच्छा चल रहा है आई सुच से, लेकिन और एक प्रॉब्लम है बिजनेस में भी। हाफ लोंग में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है बिजनेस पे, क्योंकि हाफ लोंग में आजकल जो मिलता है गुवाहाटी पे भी मिलता है और एक रात में पूरा मिल जाता है। सपोज आज मैंने हाफ लोंग पे ऑर्डर किया,
1: जी
0: कल मिल जाएगा एक पर्टिकुलर टी शर्ट्स, और मेरे को प्रिंट करने दिया ठीक है आई प्रिंट इट एंड आई डिलीवर इट टुमारो। लेकिन गुवाहाटी में भी क्या होता है, थ्रू फोन पे हम लोग दुकान वाले लोग को ऑर्डर कर लेता है, शाम को कोरियर पे वो लोग शिप करके नेक्स्ट डे में हाफ लोंग में भी मिल जाता है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो गुवाहाटी का रेट में जो वो लोग मिलता है हाफ लोंग में भी देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा फाइट करना पड़ता है। गुवाहाटी का रेट और हाफ लोंग रेट का रेट मिला के थोड़ा फाइट करना पड़ता है।
1: जी, तो आपने जैसे कहा है हमें कि ये जो सर्वाइव करना मुश्किल होता है, चैलेंजेस भी आ रही है आपको, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि बिजनेस ऐसा नहीं है कि बिजनेस का सिर्फ एक ही फील्ड है, बिजनेस कई तरह के हो सकते हैं। तो आपने यही क्यों चुना कि टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस, यही लाइन पे आप क्यों गए, मैं वो जानना चाहूँ।
0: मेरा इंस्पिरेशन मेरा भैया से था एक्चुअली,
1: जी
0: उसका नाम जोएल साइलो है, उसने एक टी शर्ट ब्रांड खोला था ट्राई फिक्शन करके,
1: जी
0: कोई लोग सुना होगा ट्राई फिक्शन करके, इट्स बेसिकली बेस्ड इन आइजॉल। तो उसने मेरे को बहुत इंस्पायर किया, लाइक ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उसका स्टोर भी बहुत सारा में खुला है। तो थ्रू उस फुटस्टेप्स लेके तो आई थॉट हाफ लोंग में क्यों ना बिजनेस लाइक टी शर्ट्स का प्रिंटिंग बिजनेस क्यों ना खोले,
1: जी
0: तो दैट्स व्हाई मैंने वही बिजनेस चूज किया है।
1: जी तो आपके भैया ही आपके लिए इंस्पिरेशन रहे हैं।
0: जी,
1: तो आशा करती हूँ कि आपका ये वाला जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है वो आगे और भी अच्छे से चले। जी, तो अभी हम आपसे ये थोड़ा जानना चाहूँगी कि आज आप एक एंटरप्रेनर और क्रिएटिव प्रोफेशनल हैं, लेकिन बचपन में आप कैसे थे, मुझे ज़रा ये बताइए।
0: बचपन में मैं बहुत चंचल था। आई थिंक इट वॉज के जीवन में डॉन बॉस्को पे था,
1: जी,
0: मेरे को एक सर्टिफिकेट मिला था चंचल बॉय बोल के, तो दैट
1: ओके
0: आई वॉज दैट बहुत चंचल था। लेकिन बड़ा होते होते लाइक आई वॉज इन अ फर्स्ट स्टूडेंट नहीं था, लास्ट भी नहीं था, लाइक रेंज पे था, मिड रेंज पे। तो क्रिएटिव वाइज लाइक सीधा सीधी बोलूँगा मैं इतना क्रिएटिव नहीं हूँ, लेकिन हाँ आजकल गूगल पे बहुत मिलता है आइडियाज़, बहुत मिलता है, और यूट्यूब्स पे जहाँ तहाँ सर्च कर लो आइडियाज़ मिल जाता है। तो उससे लाइक इफ़ यू डिग इट तो अपना पोटेंशियल को पुश कर सकता है।
1: जी
0: आई डोंट थिंक सो उस टाइम मैं इतना क्रिएटिव नहीं था, बट हाँ आई थिंक बचपन में मैं चुपचाप बीत नहीं सकता था। तो लाइक हम लोग का कम्युनिटी में एक सेइंग्स होता था, जो बच्चों लोग चुपचाप नहीं बीत सकता है, वो लोग थोड़ा क्रिएटिव होता था। तो
1: बिल्कुल
0: मे बी आई वॉज क्रिएटिव।
1: जी, ये बहुत सच बात है। ये सिर्फ आपके कम्युनिटी में ये सेइंग नहीं है, हमने और भी सुना है कि जो बच्चे शांत से एक जगह नहीं बैठते उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। जी, तो अभी ज़रा ये बताइए कि जब आपने कहा आप चंचल थे और क्रिएटिव माइंडेड थे मे बी, तो स्टूडेंट लाइफ के दौरान आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी और ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको लगता है कि आपको इम्प्रूव करनी चाहिए थी उस टाइम?
0: स्टूडेंट लाइफ पे आई वॉज वेरी वीक इन मैथ्स बट आई वॉज वेरी गुड इन साइंस। तो अभी लाइक रेमिनिसिंग ऑन माई पास, तो मैं अभी सोचता हूँ लाइक इफ़ आई कुड हैव डन बेटर इन मैथ्स। तो लाइक अगर मैंने ये साउंड इंजीनियर और ये प्रिंटिंग बिजनेस का नहीं किया, तो इफ़ आई वेयर अ स्टूडेंट अगेन, तो आई थिंक आई बेसिकली गो फॉर एन इंजीनियर, प्रोबेबली सिविल इंजीनियर, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन कारपेंट्री एंड वो मिस्त्री काम मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
1: जी जी, तो आपने जैसे हमें कहा है कि आपके सब्जेक्ट वाइज आप मैथ्स पे काफ़ी वीक थे, मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी हमारे श्रोताओं के लिए कि आपके हिसाब से अभी के टाइम पे जो मैथ्स की जो वैल्यू है या फिर उसका जो बेसिक नॉलेज हर किसी को होना कितना ज़रूरी है?
0: आई थिंक मैथ्स के बिना डेली लाइफ नहीं होता, क्योंकि मैंने स्कूल के बाद मैंने कॉमर्स लिया था।
1: जी,
0: कॉमर्स में क्लास 11 और 12 पे तो मैथ्स नहीं था, फिर बी कॉम आया, उसमें बिजनेस मैथ्स आ गया था।
1: जी,
0: तो मैंने सोचा लाइफ पे कभी मैथ्स नहीं छोड़ूंगा, तो मैंने फिर मैथ्स वो फिर सब्जेक्ट आ गया वापस।
1: जी,
0: और कॉलेज खत्म होने के बाद डेली लाइफ मेरा अभी जो बिजनेस चल रहा है प्रिंटिंग का बिजनेस जो भी, उसमें सारा मैथ्स है। पैसे कैलकुलेट करने के लिए भी मैथ्स चाहिए, फॉर्मूला चाहिए।

0: जी
1: और कॉलेज खत्म होने के बाद डेली लाइफ मेरा अभी जो बिजनेस चल रहा है, प्रिंटिंग का बिजनेस जो भी, उसमें सारा मैथ्स है। पैसे कैलकुलेट करने के लिए भी मैथ्स चाहिए, फॉर्मूला
0: बिल्कुल
1: चाहिए। और हम लोग प्रिंटिंग बिजनेस में क्या होता है, उसको पिक्सल्स, इंचेस, सेंटीमीटर्स वगैरह, हम लोग बहुत एक पर्टिकुलर एरिया होता है हम लोग जहाँ प्रिंट करते हैं, उसमें भी मैथ्स चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए। तो
0: जी
1: आई थिंक इफ़ आई वे टू गो बैक स्टूडेंट लाइफ पे, आई विल श्योरली इम्प्रूव माई मैथ्स, बिकॉज आज तक मैंने सफ़र किया है, लाइक नॉट हिंदी का सफ़र, इंग्लिश का सफ़र, क्योंकि उस
0: जी
1: टाइम मैंने मैथ्स को सीरियसली नहीं लिया। मेरे को अगर पता था मैथ्स इतना इम्पोर्टेंट होता था, देन आई शुड हैव बीन सीरियस इन मैथ्स, और क्या पता लाइक आई वुड हैव बीन गुड इन मैथ्स।
0: जी आप और कहीं होते अभी एक्सपेक्टेड फील्ड पे, आप सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड पे होते अभी।
1: हाँ, लाइक आई विल डेफिनेटली गो फॉर दैट।
0: जी, चलिए कोई बात नहीं, अभी आप जो भी कर रहे हैं वो अच्छे से कीजिए। हर कोई कहता है कि जब तक अपने काम से प्यार ना हो वो काम भी आपको प्यार नहीं करता है।
1: हाँ,
0: जी
1: वही।
0: जी हमने बहुत कुछ बात किया है, आप कई फील्ड से आप जुड़े हुए हैं। मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहूंगी कि काम के अलावा आप अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करना पसंद करते हैं।
1: आई लाइक टू स्पेंड माई फ्री टाइम, एक्चुअली मैं लाइक आई डोंट वॉन्ट टेक अ रेस्ट। फ्री टाइम अगर मिला तो लाइक मैं कुछ ना कुछ बनाने का चीज़ ढूंढता हूँ। लाइक मैंने जैसा कि बोला, कारपेंट्री मेरे को बहुत पसंद है। सो लाइक घर पे मेरा सारा हार्डवेयर टूल्स रहता है, जिक्सो, आरी, जो मिस्त्री का काम रहता है। मेरा एक रैक है वहाँ पे, एक कपबोर्ड है पूरा रहता है, और मेरा पास एक प्लाईबोर्ड नहीं तो एमडीओ बोर्ड रहता ही है। तो जब भी मैं फ्री टाइम मिलता हूँ, कपबोर्ड नहीं तो कुछ बना के रखता हूँ, और एल्स अगर वो लाइक कुछ नहीं है तो एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने, मेरे पास बाइक है, उसको थोड़ा रिपेयर कर लेता हूँ, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ करने का वो चीज़ ढूंढ लेता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ रेस्ट, आई डोंट वॉन्ट माई बॉडी टू टेक अ रेस्ट।
0: जी जी बिल्कुल, जैसे आपने पहले भी कहा है आप बचपन से ही एज अ स्टूडेंट बचपन में ही आप चंचल थे, अभी भी
1: हाँ
0: आप वैसे ही है मैं अगर
1: हाँ
0: कहूँ
1: मेरा
0: तो।
1: मिसेस बोलता रहता है तू अभी भी चंचल है।
0: जी जी बिल्कुल, तो चलिए आपने जैसे अपने कहा है कि आप अपनी हॉबीज को भी एक टाइम देते हैं, उस पे अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो अभी यूथ है उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने हॉबीज को फॉलो करके, अपने पैशन को फॉलो करके अपना कैरियर भी मेंटेन करें।
1: मेरा एक्सपीरियंस में मैं ये बोलना चाहता हूँ आजकल के यूथ के लिए, यू कैन नॉट सर्वाइव इन इन एवरी हॉबी यू हैव। जैसे मैं भी फुटबॉल खेलता था, लाइक आई वॉज नॉट मेंट टू बी अ फुटबॉलर। अगर मैंने फुटबॉल को परस्यू किया, मे बी आई विल नॉट हैव बीन सक्सेस। तो हम लोग का कम्युनिटी में मैंने बहुत लोग देखा है, दे आर ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स, दे शुड हैव गो फॉर समथिंग एल्स बट दे आर नॉट गोइंग। और जो और कोई लोग होता है लाइक दे लव देयर हॉबीज, सपोज म्यूजिक पे इंटरेस्ट है और वो
0: बिल्कुल
1: लोग पढ़ाई पे भी अच्छा है, यू कैन गो साइमल्टेनियसली। नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन लाइक एक एक आदमी मेरा दिमाग पे आ गया, आई थिंक आई शुड टेक हिज नेम, उसका नाम इबोन तेरन, वो बास मैजिस्ट्रेट था, ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो APSC सर्टिफाइड था, वो अच्छा म्यूजिशियन था। आई थिंक उसने हाफ लॉन्ग के बारे में भी गाना कंपोज किया था, हिल क्वीन के बारे में भी उसने गाना कंपोज किया था। आई थिंक यू शुड लिसन टू दैट सॉन्ग, क्योंकि जब भी मैं वो गाना सुनता हूँ ना, थोड़ा वो गूज बम्स आ जाता है,
0: जी
1: एकदम पुराना वाला हाफ लॉन्ग को याद आ जाता है। तो उसका लाइफ में मैंने जो देखा है, पढ़ाई पे भी अच्छा था, ही वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, और वो एकदम क्रिएटिव था, और ही वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड कंपोजर, और
0: जी
1: वो अच्छा म्यूजिशियन भी था। तो यू कैन गो योर फॉर योर हॉबीज, पढ़ाई में भी कंसेंट्रेट करना चाहिए, पढ़ाई के बिना हम लोग कहीं नहीं जाएगा। इट्स नॉट दैट हॉबीज छोड़ के सिर्फ पढ़ाई में कंसेंट्रेट करना चाहिए, नहीं तो वो पढ़ाई कंसेंट्रेट करके सिर्फ वो हॉबीज पे जाना चाहिए, हॉबीज को वो अपना बिजनेस में टेकअप करना नहीं चाहिए। नॉट दैट, यू कैन गो साइमल्टेनियसली, लेकिन उसमें आपको मालूम होना चाहिए किस में हम लोग ज्यादा टाइम फोकस करना चाहिए।
0: जी
1: सपोज
0: जी
1: यू आर गुड इन म्यूजिक, यू आर गुड इन स्टडीज, लेकिन अगर स्टडीज पे ज्यादा टाइम फोकस दिया तो मे बी यू कुड बिकम अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर इन द फ्यूचर।
0: बिल्कुल
1: लेकिन क्योंकि म्यूजिक में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, सो आई वुड सजेस्ट आजकल के यूथ लोग, अगर म्यूजिक पे इंटरेस्ट है, गो फॉर इट, बट यू मेक श्योर यू आर अ वेरी गुड म्यूजिशियन, डोंट स्टे इन हाफ लॉन्ग, कहीं

0: बहुत स्ट्रगल किया था। मेरा दोस्त लोग बहुत चले, मरीन ड्राइव पे चले, गोवा वेकेशन पे 2 दिन के लिए चले, लाइक आई कुड नॉट गो। तो मैं लाइक बहुत स्ट्रगल किया था, लेकिन आई अभी सोचता हूँ लाइक कोई टाइम मिले तो आई शुली टेक माई फैमिली फॉर अ वेकेशन। और लाइक आई हैव सो मेनी मुंबई का मेमोरीज, लाइक आई बोलते बोलते पूरा दिन चला जाएगा। बट और एक बात बताना चाहूँगा मुंबई के मेमोरीज। आफ्टर वी ग्रेजुएटेड तो हम कैंपस रिक्रूटमेंट मिला था,
1: जी
0: तो हम लोग को एक जगह पे ब्लू फ्रॉक एक पब था, वहाँ पे हम लोग को बुलाया था। वी वेर 15 इन नंबर्स, तो उसमें सिर्फ मेरे को प्लेसमेंट मिला था। दे वेर लाइक वेरी क्वालिफाइड पीपल, आई डोंट नो व्हाई डिड दे चूज मी। तो देर वर पीपल फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ, देर वर पीपल फ्रॉम मध्य प्रदेश, मेरा दोस्त लोग बेंगलोर से भी था, दिल्ली से भी था। तो लाइक वी आर 15 इन नंबर्स एंड आउट ऑफ 15 आई वॉज द ओनली वन चूजन। आई डोंट नो व्हाई गॉड पुट मी देयर, शायद भगवान का वो लाइक ब्लेसिंग्स मिला था मेरे को।
1: जी
0: आई थिंक वो मेमोरीज मेरे को नहीं भूलना चाहिए। और वो वाला छोड़ के लाइक आउट ऑफ ब्लू फ्रॉक एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे भी मेरे मेरे को फैकल्टी के लिए कॉलिंग मिला था।
1: जी जी
0: लेकिन आई थॉट ऑफ ब्लू फ्रॉक में अगर काम किया तो उसमें थोड़ा क्रिएटिव बन जाएगा, क्योंकि फैकल्टी में अगर टीचर्स जैसे बन जाएगा लाइफ पूरा बोरिंग हो जाएगा, है कि नहीं? पढ़ाते पढ़ाते खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा, सोच
1: बिल्कुल
0: के मैंने
1: बिल्कुल
0: ब्लू फ्रॉक पे काम किया था।
1: जी। तो मैं अभी आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जैसे आप ये फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपका फ्यूचर गोल्स क्या है, थोड़ा सा अगर मैं जान पाती।
0: फ्यूचर गोल्स ये है कि पैसा कमाऊं बिफोर यू टर्न 50, जितना कमा नहीं सकता पैसा कमा लो, क्योंकि आफ्टर 50 आप लोग आई थिंक टाइम फॉर वेकेशन। इसलिए मैं अभी दिन रात काम करता हूँ, सो दैट मैं जब 50 रहूँगा तो अपने फैमिली के साथ हिमाचल,
1: जी जी
0: गोवा, बेंगलोर, जो जहाँ बोलो मैं लाइक आई कैन गो फॉर दैट, इसलिए गो फॉर दैट।
1: जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। आपके फ्यूचर के लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत सारे बेस्ट विशेस है हमारे तरफ से जी। और हमें बहुत खुशी हुई कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे स्टूडियो पे आके हमसे इतनी सारी बातचीत शेयर की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, थैंक यू।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की खास बातचीत। हमने जाना कि कैसे एक पैशन धीरे धीरे एक प्रोफेशन का रूप ले सकता है, और कैसे लगन, सीखने की इच्छा और निरंतर मेहनत किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकती है। हमारे मेहमान ने अपने सफर के कई अनुभव हमारे साथ साझा किए, चाहे वो म्यूजिक और साउंड इंजीनियरिंग की दुनिया हो, अपना स्टूडियो शुरू करने का फैसला हो, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के सफर में आने वाली चुनौतियां। उनकी बातों से ये जरूर सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी रुचि और मेहनत पर भरोसा रखें तो नए रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये चर्चा खासकर युवा श्रोताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी होगी। हमारे मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमसे बातचीत की और अपने अनुभव हमारे साथ बांटे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ अंकिता, आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

श्रोताओं, युवाओं पर आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुनी एक खास बातचीत मिस्टर शांगमिंग थंग मार के साथ। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंकिता पॉल। आइए अब आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
2: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
2: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
4: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केनिया, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
5: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। ब्रिक्स नेशंस कॉल फॉर स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन टू एड्रेस वाइडनिंग रेंज ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस इंक्लूडिंग टेररिज्म एंड साइबर थ्रेट्स। Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral...

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए समाचार प्रभाग। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम को। सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

भूख लगी जोरों की भूख लगी।

0: श्रोताओं, शुरू की रंगोली कार्यक्रम के तहत आप आनंद ले रहे थे मशहूर गायक मोहित चौहान के कुछ सुपरहिट गानों का। यह आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं पुअर आंचलिक बातोरी, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।
1: आकाशवाणी गुवाहाटी।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए गए भुआर आंचलिक बातोरी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: हेलो हाफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

आइए आरंभ करते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं खेलमा कार्यक्रम के अंतर्गत खेलमा भक्ति गीत, जैतलीन जैते और उनके साथियों की आवाज में।

श्रोताओं, जेतलीन जेते और उनके साथी के गाए इसी भक्ति गीत के साथ ही खेलमा गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं रांगखोल कार्यक्रम। सुनते हैं रांगखोल भक्ति गीत ज़ियोनलियान पोइत्योंग और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, इसी भक्ति गीत के साथ ही रांखोल गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं जयंतिया कार्यक्रम। सुनते हैं जयंतिया भक्ति गीत मिलम भलंग प्रंगे और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, मैं लम भलंग प्रिंगे और उनके साथियों के गाए इसी भक्ति गीत के साथ ही जयंतिया गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं ब्याथे कार्यक्रम, सुनते हैं ब्याथे भक्ति गीत जारलेनी ब्याथे और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, जार्लेनी ब्याते और उनके साथियों के गाए इसी भक्ति गीत के साथ ही स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम का। इसी के साथ मैं यानी मीना लेती हूँ आप सभी से इजाजत। धन्यवाद।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15।
1: आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी।
0: फिल्म मुल्क।
2: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़।
1: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग।
1: ए बेखबर।
3: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो शायरी हमने श्रोताओं को सुनाई आपकी ही कलम से निकली थी, तो ये शायरी की लौ कैसे जली आपके भीतर, कब जली?
4: उसके बड़े कारण, बड़े असबाब हैं उसके। असल में क्या होता है कि शायर पैदा होता है
3: जी,
4: बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, इसीलिए शायर को गॉड गिफ्टेड कहते हैं
3: जी।
4: खुदादाद सलाहियत का नाम है शायरी। तो जब खुदा किसी को शायर बनाना चाहता है और बड़ा शायर बनाना चाहता है, तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारता है। किसी की माँ छीन लेता है,
3: ओहो,
4: किसी से बाप छीन लेता है, किसी से महबूबा छीन लेता है, किसी को बेघर करा देता है, लेकिन बहुत कुछ लेके उससे बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसात हुए, घटनाएं हुई। बहुत छोटा था, बचपन में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली और फिर मेरी परवरिश मेरी नानी ने की, मेरे मामू ने, मेरे नाना ने की, खालाओं ने, मामी ने, ममानी ने, तो मैं ननिहाल में परवरिश पाया। मैं ननिहाली गांव और ददियाली गांव दोनों जगह पे हमारे हम जमींदार थे, खेतीबाड़ी का काम था। तो ये सब जो घटनाएं हुई, ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये जमा होती गई
3: जी।
4: और फिर एक छोटी उम्र में इश्क भी हुआ, वो भी नाकाम हुआ। तो ये सारे जो सदमात थे, ये जो सारे दुख थे, जो सारे गम थे, महसूसात थे, है ना
3: जी,
4: ये सब जो एहसास थे, ये सब जमा होते गए और एक दिन इन्हीं दुखों की कोख से मेरे अंदर शायर पैदा हुआ
3: जी, जी।
4: ये 1984 का ज़माना था।
3: कितने बड़े थे आप?
4: मैं 71 में पैदा हुआ।
3: ओ, तब तो बहुत छोटा।
4: हाँ हाँ, छोटा ही था, कच्ची उम्र थी। तो मैं उस ज़माने में गुजरात के शहर बड़ौदा में था, 1984 लास्ट या 85 शुरू का ज़माना था। तो हम काम करते थे, कई कारीगर मिलके काम करते थे, तो उस दिन भी काम कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि मैं जैसे बीमार हूँ, बुखार है, तो मैंने काम बंद किया और रूम पे चला गया। लेकिन मैं बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था।
3: काम क्या कर रहे थे?
4: मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस जमाने में।
3: अच्छा।
4: जो पान में सुपारी खाई जाती
3: जी,
4: है
3: जी।
4: वो बड़े पैमाने पे बड़े स्रोते से वो काटी जाती है, और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज़्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात में ही खाई जाती है। तो मैं रूम पे गया और लेट गया, और मेरी आदत है चादर गर्मी में भी
3: जी,
4: थोड़ा सा ऊपर डाल लेता हूँ। तो चादर डाल ली मैंने और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था।
3: क्या
4: और
3: बात है?
4: आज मैं रेडियो स्टेशन पे हूँ, और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में,
3: जी, जी, जी।
4: या उसको समझने में, या उसके महसूस करने में।
3: हाँ।
4: तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही कैजुअली, मतलब बस
3: रेडियो का स्विच ऑन कर,
4: हाँ, कर दिया ऑन, और जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे कांटा था मैंने उसको कुछ घुमाया वुमाया भी नहीं, सरकाया भी नहीं, वहीं से एक गजल
3: बज रही थी,
4: और वो गजल थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं।
3: क्या बात।
4: क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती हैं, बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीजा, जिस्म की नज़ाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये गज़ल कोई गा रहा था, और इस गज़ल के साथ साथ मेरी गज़ल शुरू हो गई, और सेम मीटर में, है ना। अब वो गज़ल तो मैंने ज़ाय कर दी, मुझे याद नहीं है। उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है, जिसे मक्ता कहते हैं।
3: शुरू हो गई मतलब आप कहने लगे।
4: मैं, हाँ,
3: अच्छा, उस गजल के साथ साथ आप कहने
4: लगे। मेरे अंदर का शायर जो है मुतहर्रिक हो गया, एक्टिव हो गया उसी गजल के साथ
3: जी। और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो, विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था।
4: अच्छा।
3: तो वहाँ पर गजलों का प्रोग्राम हुआ
4: करता था। हाँ, तो वो गजल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था, मैं बड़ौदा शहर में था गुजरात में, और वो गजल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई, और उसी के साथ साथ मेरी गज़ल की तख्लीक शुरू हुई। पहली गज़ल मैंने उसी दिन कही, और उसके बाद से फिर गज़लें कहने लगा। मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा, तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई होती थी उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे। लेकिन आशिकी और शायरी इस तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती, ख़त्म नहीं होती, वो एक जुनून होता है और जो चलता रहता है।
3: तो वो गजल याद है?
4: गजल तो याद नहीं है।
3: हाँ।
4: क्योंकि मैंने वो ज़ाय कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे, जिसमें तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गजल का आखिरी शेर होता है, वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना।
3: क्या बात है।
4: अच्छा, मीटर सेम है। जो उस गजल का मीटर था वही इसका मीटर है, बहर वही है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूं पत्थरों को है मालूम।
3: क्या बात।
4: हाँ।
3: है। वाह वाह, क्या बात है। तो मतलब रेडियो ने आपकी गजलों की दुनिया की शुरुआत की। तो
4: बिल्कुल,
3: मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से ली आपने शायरी की।
4: हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है।
3: क्या बात है
4: जी।
3: शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है, तो यहाँ पर कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं, आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ, या फिर कोई और गाना भी सुन सकते हैं। वैसे आपकी लंबी फहरिस्त है गानों की, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे।
4: हाँ, वो सुना दें आप। मधोशी का गीत है, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है।
3: क्या बात है।
4: घर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
3: वाह वाह वाह। तो सुनते हैं मधोशी फिल्म का ये गाना।

0: शकील साहब, इस गाने के बाद यूं तो हम फिल्मों में आपकी एंट्री के बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिल टूटने की बात भी है गाने में, और ये अमूमन कहा जाता है कि दिल टूटने पर शायरी की शुरुआत होती है, और आपने जिक्र भी किया कि माँ नहीं रहीं, अम्मी नहीं रहीं, और इश्क का भी जिक्र किया, तो वो कहानी बताइए हमें कि वो इश्क क्या था, दिल टूटना कैसे हुआ।
1: असल में दिल टूटना एक आम जुमला हो गया है, जो मतलब कहा जाता है कि भाई शायरी करने के लिए दिल का टूटना ज़रूरी है। दरअसल एक बुनियादी दुख चाहिए
0: जी,
1: बुनियादी दर्द। ऐसा नहीं कि आप ज़ख्मी हो गए और वो ज़ख्म का एक दर्द है वो भर जाता है, वो मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है ज़ख्म भरते ही।
0: जी,
1: बुनियादी जो दुख है, बुनियादी जो दर्द है, जो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है, माँ से मिले, बाप से मिले, या ननिहाल से मिले, या महबूबा से मिले, महबूब से मिले, तो ये बुनियादी दुख जो होता है वो आपके अंदर से नहीं निकलता है, और वो आपको लगातार सेंसेटिव बनाता रहता है।
0: जी जी
1: और शायर होने के लिए सेंसेटिव होना बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: तो मैं समझता हूँ कि शायर जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सेंसेटिव प्राणी है।
0: जी
1: हाँ, तो वो बुनियादी दुख एक नहीं था मेरे यहाँ, मेरे यहाँ बहुत थे। एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहाँ रहे नहीं बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई। तो ननिहाल भी दूसरा घर होता है, माँ का मायका होता है, तो वो भी घर ही होता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है,
0: बिल्कुल
1: जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार आपका होता है वो नानी नाना के यहाँ, मामू और ममानी के यहाँ इतना अधिकार नहीं होता
0: बिल्कुल सही बात,
1: जितना अधिकार आपका आपके बाप
0: माँ से
1: के
0: मिलता
1: यहाँ।
0: है बिल्कुल।
1: तो जब आप सेंसिटिव होते हैं, कैजुअली तो बहुत सारे बच्चे ननिहाल में परवरिश पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से वहाँ पले, लेकिन चूंकि मैं बड़ा सेंसिटिव था बचपन से ही, शायद खुदा ने तय कर दिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे शायर होना है, तब मैं शायर नहीं था लेकिन सेंसिटिव मैं शुरू से था, तो ये प्रोसेस था
0: चल रही थी।
1: हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था।
0: जी,
1: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए, और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का, जिसमें सारे दुख जमा हो रहे
0: जमा
1: थे,
0: हो रहे थे,
1: और एक
0: क्या
1: दिन
0: बात
1: वो
0: है।
1: फट गया।

0: और वो शायर पैदा हुआ उन दुखों की कोख से, शायर पैदा हुआ
1: जी।
0: तो एक बुनियादी दुख चाहिए। ये बुनियादी दुख आपको जावेद अख्तर साहब के यहाँ भी मिलेगा, ये बुनियादी दुख आपको गालिब के यहाँ भी मिलेगा
1: जी,
0: निदा फाजली साहब के यहाँ भी मिलेगा, मीर के यहाँ भी मिलेगा। मीर का तो मामला ऐसा है, मीर तकी मीर हमारे बड़े शायर थे, उन्होंने एक ख्याली महबूबा क्रिएट कर ली थी और उससे इश्क करते थे जो दुनिया में थी ही नहीं लड़की।
1: जी जी जी
0: ठीक है। तो आप सोचिए कि उस इश्क में, उस तकलीफ में कितनी शिद्दत रही होगी कि एक ख्याली महबूबा का जन्म हो गया, है ना। वो बीमारी भी कहते हैं वो इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया। मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ जो हमारी फिल्म थी, हमारी कहानी में। तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का
1: जी,
0: उसके बगैर मुमकिन नहीं है
1: उस,
0: क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है, सेंसेटिव करता है, जिसकी वजह से आप जो हैं चीज़ों को बहुत शिद्दत से कैच करते हैं,
1: महसूस करते हैं। वो जो खरोचे होती है वो खरोच आपको कहीं शब्दों में ढाल लेते हैं तो आपको सुकून मिलता है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो।
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर,
1: क्या बात है।
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर।
1: क्या बात है,
0: शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर।
1: वाह,
0: अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे।
1: वाह वाह वाह।
0: दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज है
1: जी,
0: हम
1: जी।
0: उसको बहुत आसानी से उस दर्द को फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में बाहर निकाल देते हैं उसको। नहीं, उसको जीना चाहिए उस दर्द को। वही दर्द आपको बड़ा कलाकार, बड़ा फनकार बनाता है,
1: ऊंचाई तक ले जाता है कई बार।
0: तो दर्द हीरा है दर्द मोती है,
1: क्या बात है।
0: दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और दर्द में मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपने मुस्कुराहट से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं नानी की जो बातें हैं, आपने जिक्र किया नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं नानी की जबान से सुनी हुई, वो कहानियाँ, नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत नसीहतें, कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए।
0: नानी की मोहब्बत है याद है।
1: बताइए, कोई किस्सा बताइए नानी
0: का। मैं आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की।
1: क्या बात है। ओ,
0: बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने। माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है। माँ के साथ एक आध वाकया जरूर याद है लेकिन चेहरा नहीं याद है। मेरी माँ को टीबी था उस जमाने में, टीबी लाइलाज था
1: जी जी,
0: तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने बहुत प्यार किया और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी, मामू से। अपने बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज़्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाक़े हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो, और कोई चीज़ जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती थी।
1: क्या बात है। बहुत बढ़िया।
0: और वो मुझे देती थी चोरी से, चुपके से, और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थी बहुत
1: जी जी।
0: और मैं पढ़ने में तेज था शुरू से, एक आध दो सब्जेक्ट में कमज़ोर भी था, जैसे मैं गणित में कमज़ोर था, और जो धार्मिक पढ़ाई होती है, दीनियात कहते हैं वो एक सब्जेक्ट होता था, उसमें कमज़ोर था, बाकी सब में राइटिंग वगैरह में, आलेख में
1: तेज थे,
0: बहुत तेज था मैं। हाँ,
1: तो यहाँ पर जब आप नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी,

0: और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में, जहाँ पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे।
1: हाँ, सूरत में
0: जी, सूरत में।
1: जी,
0: तो वो क्या वाक्या है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
1: मुशायरों में तब मैं आया नहीं था और मैं सूरत में ही रहता था,
0: जी
1: और गुजरात उर्दू एकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था, वो बहुत ही बड़ा मुशायरा था, और ये बात है 1994 की,
0: जी
1: है ना।
0: शीनकाफ निजाम भी आए
1: हाँ
0: थे
1: हाँ
0: उसमें।
1: शीन काफ निज़ाम साहब ने उसकी निज़ामत की थी, वो उसका संचालन किया था।
0: जी
1: अच्छा, आपको इतना डिटेल में
0: बिल्कुल, कुंडली आपकी पता है लेकिन हमें श्रोताओं तक पहुंचाना है सारी बातें।
1: तो उसमें सारे बड़े शायर, मतलब निदा फाजली,
0: जी
1: जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी और शीन काफ निज़ाम और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर थे, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे
0: जी
1: सब।
0: जी
1: और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब आप यूँ समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी, और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी पूरे
0: जी
1: मुल्क
0: जी
1: में।
0: जी
1: संदेशे आते हैं, है
0: गाने
1: ना,
0: आते रहते
1: आए
0: बिल्कुल।
1: जाते हुए लम्हों, वो गाने, मतलब ये वही जमाना था।
0: हाँ
1: और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे जो गुजरात उर्दू एकेडमी के चेयरमैन थे, और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो प्रोफेसर वारिस अलवी साहब। तो उनके फ़ोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे, वरना वो आते भी नहीं।
0: जी जी जी
1: हाँ, तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था, और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई कि उसमें कई शायर मकामी थे, मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई। तो लोकल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है,
0: जी
1: बाद में फिर जो मेहमान शायर हैं
0: हाँ
1: दूसरे शहरों
0: उनको
1: से
0: बाद
1: आए
0: में
1: हैं
0: रखा।
1: और जो नामचीन हैं, बड़े शायर हैं, फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा ख़त्म होता जाता है तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी, उनको पढ़ाना शुरू किया शीन काफ निज़ाम साहब ने। अच्छा, उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे, मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी
0: जी
1: थे,
0: जी जी
1: तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया, और दो या तीन शायर पढ़े होंगे कि हूटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है, पब्लिक जो है, सामईन जो है, वो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था, और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी, और ये जो बाहर से सब शायर आए
0: जी
1: थे
0: जी
1: इनकी देखभाल में भी हम
0: जी
1: थे,
0: हाँ
1: जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी।
0: और उसमें खुद को
1: जावेद,
0: प्रूफ करने का जब समय
1: हाँ
0: था।
1: हाँ
0: जी
1: जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात
0: जी
1: थी। शीन काफ निज़ाम साहब से शायद पहले मिला होगा। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में ये सारे शायर ठहरे थे, तो मेरी मुलाकात, चूंकि मैं वहाँ पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था मैं, तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी, और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। और वो क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था, लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है, मतलब उनका सवान ही नावल है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर एक नावल लिखा
0: जी
1: है जो
0: जी जी
1: दो जिल्दों में है, दो वॉल्यूम में है, तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी,
0: जी
1: दीवारों के बीच। वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी और मैंने वो पढ़ रखी थी,
0: जी
1: और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, उसको पढ़ के रोता था मैं। निदा
0: ओ
1: फाजली का जो कैरेक्टर है वो लगता था मैं हूँ,
0: क्या बात
1: है
0: है जी, काफी कुछ
1: ना।
0: दुख उनके भीतर भी जमा
1: हाँ,
0: था।
1: तो हमारी ज़िंदगी बड़ी मिलती जुलती थी,
0: जी
1: तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के रोता था मैं। तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की, तो वही वजह बनी, कारण बनी हमारे नज़दीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस ज़माने में मुशायरों में तूती बोलता था,
0: बिल्कुल।
1: और ख़ास तौर से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, सूरत में बहुत अच्छा सुना जाता था
0: जी
1: उनको।
0: जी
1: तो अब जब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे। तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो निदा फाजली साहब ने, एक कासिम हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन थे, नायब, तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे। उन्होंने मेरे लिए मतलब अकेडमी और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने। तो लोकल पैमाने पर उन्होंने मुझे स्टेज भी दिलवाया। तो निदा फाजली साहब ने उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
0: क्या बात है,
1: ठीक है। और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी लाए थे, तो हम लोग जानते भी नहीं थे और उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी वाइफ है। उन्होंने फोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी। तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी और
0: विविध भारती में आ चुकी है।
1: अच्छा, और बड़ी खूबसूरत लगती थी, मतलब उनकी जो
0: अभी भी लगती है
1: तो उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से भी थोड़ा मिलता जुलता है,
0: जी, जी।
1: है ना। और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी, रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी, वो बॉम्बे से, वो प्रोफेसर हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी नक्काद हैं, क्रिटिक भी हैं और शायरा भी हैं, और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई हैं, प्रोफेसर भी थी वो। तो वो भी थी उस मुशायरे में, रफिया शबनम आबिदी साहिबा। लेकिन सामेईन की जो नज़र थी वो मालती जी पे ही थी, हाँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत लगती थी और काली साड़ी में थी वो। तो अब जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने एक गजल का मतलब सुनाया, मतलब पहला शेर, कि किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए।
0: क्या बात है,
1: किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए, खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह।
1: खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए। फिर एक शेर था जो मैंने मालती जी की नजर कर दिया, है ना। हालांकि कोई दूसरा शायर होता तो निदा फाजली साहब की मौजूदगी में उनकी बीवी को ऐसा शेर
0: हिम्मत नहीं करते, नजर
1: करने की हिम्मत नहीं करता। अब मैंने जुर्रत कर ली,
0: जी जी,
1: और वो शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं।
0: क्या बात है,
1: मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं अगर वो सांप मेरी आस्ती का हो जाए।
0: वाह।
1: अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया अचानक, इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर सा हो गया, मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था, वो भी मैंने उन्हीं की नजर कर दिया उसके बाद, कि दुआ करो वो सितारा जमी पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही का हो जाए।
0: क्या बात है बहुत बढ़िया।
1: अब निदा साहब ने उठ के मुझे माला पहनाया,
0: जी जी,
1: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि जा दे दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी जिंदगी का एक
0: यादगार
1: और पहला बड़ा मुशायरा था।
0: जी जी।
1: उससे पहले मैंने छोटी छोटी गोष्ठियां जो होती हैं हर शहर में, जो शायरों की अपनी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, या कोई छोटा मोटा मुशायरा दो चार पढ़ा होगा। ये मेरा पहला बड़ा मुशायरा था और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला। और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के जरिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बम्बई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला मैं। हाँ
0: जी जी। तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहाँ पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद आया।
1: इरशाद, इरशाद, इरशाद।
0: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए।
1: क्या बात है।
0: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए। तो ऐसे आपके तमाम अशार लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, लोग अपनी महबूबा के लिए जब खत लिखते हैं, खतों खतूत का ज़माना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी ज़माना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं।
1: हाँ, ये शेर भी कितना यूनिक है
0: जी,
1: कि मैं इसलिए सो रहा हूँ कि तेरे ख्वाब देख पाऊं मैं
0: जी,
1: मैं
0: जी,
1: सो रहा हूं तेरे ख्वाब देखने जी, के लिए।
0: तो इसमें तमाम तरह के जज्बात हैं, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को

0: ये थप्पड़ फिल्म का गाना था शकील साहब, और अनुभव सिन्हा जी इसके फिल्म के निर्देशक थे, विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं, और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की, आपका भी जिक्र हुआ था।
1: अच्छा,
0: तो आप बताइए, अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई, मुंबई आए तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी, अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है।
1: तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले।
0: जी,
1: हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो,
0: जी,
1: तो सेवी अली नाम है उनका। उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे।
0: जी,
1: अनुभव सिन्हा

0: साहब शायरी के शौकीन हैं और ख़ुद भी वो कविता लिखते हैं और गज़ल भी शेर भी कहते हैं कभी
1: अच्छा,
0: कभी।
1: ये बात
0: हाँ
1: तो नहीं बताती
0: कभी कभी
1: उनको।
0: शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते
1: क्या बात
0: हैं।
1: है, बहुत
0: तो
1: बढ़िया
0: हाँ तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो
1: जी,
0: किताब पढ़ते हैं,
1: बहुत
0: नावेल
1: पढ़ते
0: और
1: हैं
0: कहानियाँ
1: जी।
0: बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गज़ल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था,
1: जी।
0: तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है, जो शायद दिल्ली में रहती हैं या कलकत्ता में रहती
1: जी।
0: हैं, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है, बाद में मुझे पता चला। तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गज़ल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गज़ल उनको बड़ी पसंद है।
1: क्या बात है।
0: हाँ मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के ज़रिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफ़र है रावण तक या तुम बिन टू तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है।
1: बिल्कुल।
0: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी
1: थप्पड़
0: 80 तक,
1: और भीड़, ये
0: भीड़
1: सब
0: और
1: तो
0: 80 तक आया है,
1: आर्टिकल 15
0: आर्टिकल
1: बिल्कुल अलग है।
0: फिफ्टीन, थप्पड़, अनेक, ये सारी सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है या 10 का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थीं
1: जी।
0: और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थीं। और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं ख़ास तौर से, ऐसे गाने बनते थे। वो गानों से ही आए थे अनुभव सिन्हा साहब, वीडियो के डायरेक्टर थे। जो पहले एल्बम का बड़ा क्रेज़ था
1: जी,
0: तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे, तो
1: और
0: वो
1: सुंदर फिल्मांकन किया उन्होंने।
0: हाँ बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए हैं फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज़ को संभालना शुरू किया और जो पहली फिल्म बनाई उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी, अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम बिन। वहाँ से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूँ, उसी का मुझे दुख है।
1: जी
0: लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक
1: जी
0: है,
1: जी
0: वो भी मेरी खुशनसीबी है।
1: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती हूँ।
0: हाँ तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले, वो जो पहले वाले,
1: पहले
0: जो
1: वाले
0: पहला
1: नहीं।
0: वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले।
1: देर आए दुरुस्त
0: तो
1: आए।
0: हाँ तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया, उनके बैनर का नाम है बनारस और वो खुद बनारस के रहने
1: जी
0: वाले
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: तो आदमी जहाँ पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं और कुछ गलियाँ ख़त्म हो गई हैं,
1: जी।
0: कुछ जगहें बदल गई हैं सब, फिर भी वहाँ जाता हूँ मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब
1: जी।
0: कट कटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूँ, वो जो स्कूल जहाँ पढ़ता था वहाँ जाता हूँ अकेला और उसको फील करता हूँ, मैं सिर्फ फील करता हूँ
1: जी।
0: खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं इसलिए अपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा है,
1: जी जी
0: बड़ा
1: जी
0: खूबसूरत सा
1: जी
0: नाम भी है
1: उनके
0: बनारस।
1: नंबर पर वही लिखा हुआ था,
0: हाँ हाँ
1: उनके
0: हाँ
1: व्हाट्सएप नंबर
0: हाँ
1: पर।
0: तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ तीन चार फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना, एक वार्निंग थी और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी,
1: जी जी
0: है
1: जी
0: ना, और इसी सीरीज़ की एक फिल्म थी जिद
1: जी
0: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे।
1: उसमें आपने गाना लिखा है
0: हाँ
1: जिद।
0: वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना, रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले दो तीन गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया, वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फ़ोन किया और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फ़ोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है, तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए, उसका म्यूजिक मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
1: ये फिल्म का नाम एक बार
0: फिर, जिद,
1: जिद फिल्म,
0: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया,
1: जी जी।
0: तो मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीज इश्क हूँ मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए,
1: क्या बात है।
0: तो ये सारे गाने सुपर हिट हुए उसके।

तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ हैं रत्ना सिन्हा जी, वो फिल्म कर रही थी शादी में ज़रूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो अनुभव

0: सिन्हा साहब जो हैं जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी, जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी, ये जो मैंने अभी नाम लिए मैंने
1: जी।
0: ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद जो जगजीत सिंह जी ने गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ तेरी फरियाद हो गया है ना, तो ये पिक्चर भी नहीं चली
1: जी।
0: उसके बाद जो है ये रिलीज हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूँ तुझ में, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊँ फिर सुबह सुबह जागूँ तुझ में, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूँ तुझ में।
1: जी, क्या बात।
0: तो ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूँ समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया, पहला तो खई के पान बनारस वाला है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूँ बनारस तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वजह से, और पूरे देश में मिलती है
1: जी।
0: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी तुम बिन टू फिल्म के गाने का भी जिक्र
0: हाँ,
1: किया
0: हाँ,
1: है।
0: हाँ, हाँ,
1: वहाँ पर जगजीत सिंह साहब ने एक गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब, और साथ में रेखा भारद्वाज की
0: जी
1: आवाज़
0: हाँ,
1: थी।
0: जी हाँ।
1: तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जगजीत सिंह साहब एक गज़ल के मामले में गज़ल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं
0: जी
1: है।
0: हाँ, मेरे तो सबसे पसंदीदा गज़ल सिंगर हैं, मैं इज़्ज़त करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी।
1: और रेखा भारद्वाज भी थी उसमें।
0: हाँ,
1: उस
0: लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे छूता है गज़ल सिंगर वो हैं जगजीत सिंह साहब, और वो गज़ल बड़ी फेमस थी, तो उस गज़ल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे ज़िद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गज़ल लिख देता हूँ, बोले नहीं मुझे तो वही चाहिए।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतला चेंज करते हैं। नहीं, मतला वही रहेगा, तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नजर आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज मुझे चाहिए, फरियाद लफ्ज चाहिए मुझे।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो मैंने कहा ठीक है।
1: हाँ।
0: फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे,
1: क्या बात है।
0: मुझे सिचुएशन बताई। पहली जो फिल्म थी तुम बिन, उसकी भी जो कहानी थी वो एक लड़का है जो बज़ाहिर मर गया है
1: जी,
0: लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है लेकिन अब वो बाद में फिर वो वापस आता है, इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बज़ाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी, वो मौजूद है, और बाप जो है लड़के का कह रहा है कि ये मर चुका है तू इसको भूल जा, नई जिंदगी शुरू कर, मर गया ये, कहाँ इसके अभी चक्कर में है तू। और उसी जगह पे दूसरे लड़के का तारुफ होता है, दूसरा लड़का जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, तो मुझे बताया गया कि यहाँ से वो गाना शुरू होगा। तो मैंने लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे,
1: क्या बात है, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, वाह,
0: तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे,
1: वाह वाह।
0: ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, के उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहाँ से निकल, तेरी जिंदगी बहुत, तुझे बहुत अभी जीना है, तो मान तो रही है कि ठीक है अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे, मतलब अभी भी जैसे तू है ना, मान भी लिया फिर भी।

0: तो होता ये था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है और इस लाइन को आपको दो लाइन करके और ये तीसरी लाइन ही आएगी।
1: जी जी।
0: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना।
1: जी जी।
0: ठीक है, तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफ़र, ये पहली जो गज़ल थी ये फ़ायज़ अनवर साहब ने लिखी थी, फ़ायज़ भाई हमारे दोस्तों में हैं, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफ़र, जिंदगी तेज़ बहुत तेज़ चली हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: अब मैं आपको बताने के लिए ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गजल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना है, पहली लाइन एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है। जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है
1: जी।
0: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए।
1: क्या बात।
0: और वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए। तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, रात कुछ ऐसे कटी है,
1: रात कुछ ऐसे कटी है
0: कि सहर ही ना हुई।
1: क्या बात है, वाह।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई।
1: वाह, क्या बात है।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।

जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे में।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

हम सुन रहे थे श्री राम भजन चंदन दास की आवाज़ में। राजेंद्र राजवंशी ने इसे लिखा और सरस्वती कुमार दीपक ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे स्वर बहार एल्बम से यह नगमा, जिसे गाया सुमन कल्याणपुर ने, अनजान के बोल और श्याम शर्मा ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
5: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
4: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
5: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
4: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
5: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
4: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और सुनते हैं रंग तरंग का अगला नगमा, नुमाइश एल्बम से, पंकज उदास की आवाज़ है, जफ़ार गोरखपुरी ने इसे लिखा है और संगीतबद्ध किया है पंकज उदास ने।

0: सीमा शर्मा का गाया हुआ ये नगमा हम सुन रहे थे। दलीप ताहिर ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविद भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में गीत गजल एल्बम से दिलराज कौर की आवाज में, जिसे बेनी सतामकर ने संगीतबद्ध किया है। सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने फिर दोबारा शेर पढ़ा। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो वाला बोलता है कि साहब मुझे अगला शेर भी पढ़ने दीजिए अभी। तो ऑडियंस में से आवाज आती है कि जब तक आप इसको सुर में नहीं पढ़ेंगे हम मुकर्रर ही बोलते रहेंगे।

0: हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस नगमे को, जिसे खयाम ने संगीतबद्ध किया और मधुकर राजस्थानी ने जिसे लिखा है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
5: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं अगला नगमा सुधा मल्होत्रा की आवाज में। पीरजादा सफक लखनवी ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह ने इस नगमे को संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे नाम फिल्म का यह गीत पंकज उदास और साथियों की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से जुड़ा हुआ यह गीत। आइए सुनते हैं अगला नगमा, यानी आज के कार्यक्रम रंग तरंग का यह आखिरी गीत है जिसे हमने चुना है वेलवेट वॉइस हरिहरन एल्बम से, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है हरिहरन ने और इसे लिखा है मुशीर ने। चलिए सुनते हैं ये नगमा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित। ये कार्यक्रम पुनः आप सुन पाएंगे समाचार के बाद। आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10

0: हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द भी वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए गए थे हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आइए आपको पुनः सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

हम सुन रहे थे गीतबाजी फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में साहिल लुधियानवी के बोल और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए याद करते हैं गीता दत्त को उनके गीतों के साथ। तो चलिए सुनते हैं उनके ही द्वारा गाया गया ये और एक और गीत।

0: हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में और भी नगमे हम सजाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
5: सखी सहेली।
0: और कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं एक छोटा सा विराम।

रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और हमने आज की यादों की महफिल सजाई है गीता दत्त के द्वारा गाए हुए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं सुजाता फिल्म का यह गीत जिसे गाया है गीता दत्त ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और सचिन देव वर्मन ने इसे संगीत दिया है।

आइए सुनते हैं गीता दत्त के द्वारा गाया हुआ, जिसमें मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने उनका साथ दिया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, और फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

0: हम सुन रहे थे आर पार फिल्म का ये गीत गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह।

0: सात बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज सजाई है यादों की महफिल गीता दत्त के गानों के साथ। तो आइए सुनते हैं फिल्म CID का यह गीत, जिसे लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने, संगीतकार हैं OP नैयर और गाया है गीता दत्त ने।

हम सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज़ में, कमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला गीत, जो कि है 12 o'clock फिल्म से। गीता दत्त की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और ओपी नैयर का संगीत है।

रंगीली जिंदगी है हसी।

Chipotle.

हम सुन रहे थे ये गीत श्रीमती 420 फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में जानिसार अख्तर के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं एक और गीत गीता दत्त की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में गीता दत्त की आवाज़ में, और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं उन्हीं के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अनुभव फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है गीता दत्त ने, लिखा है गुलजार ने और कनू रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे साहेब बीबी और गुलाम फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोल और हेमंत कुमार के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत कागज़ के फूल फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में कैफी आज़मी के बोल और सचिन देवर्मन का संगीत।

0: विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। पुनः आप सुन पाएंगे समाचार के बाद। आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सदस्य के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सदस्य के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। यह दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन हैं।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर, जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए गए थे हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब दोबारा से हम सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
3: बचपन में हम खार मुंबई में रहते थे। पूज्य माता जी जब भी लिंकिंग रोड के हेयर ड्रेसर के पास ले जाती थी तो कहती थी, बेटे के हेयर कट शशि कपूर जी के स्टाइल में कानों तक बड़े ही रखो। परंतु विवाह के बाद यानी शादी के बाद उनकी धर्मपत्नी ने डंडा दिखाकर उनका हेयर कट स्टाइल बॉर्डर फिल्म देखकर छोटे फौजी जैसे कटवा दिए हैं और कहती हैं कि अब ज़्यादा स्मार्ट लगने लगे हो। ये फैशन है जो बदलता रहता है। देखिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फैशन के कपड़े सब हमारे सिनेमा जगत की देन है। ब्रह्मचारी की मुमताज़ की साड़ी, देवदास की माधुरी, ऐश्वर्या की ड्रेस, माधुरी के नए स्टाइल, दीदी तेरा देवर दीवाना, अनगिनत ड्रेस श्रृंखला हैं। और इन सब में वो कहते हैं कि राजेश खन्ना का स्टाइल नहीं भुला सकते। काफ़ी श्रोताओं ने बता दिए तो गाने वो बता नहीं रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। हमारे श्रोताओं में बहुत सारे श्रोताओं ने एक बात ज़रूर कही है कि आज तो बातें महिलाओं की होंगी, हम पुरुष इसमें क्या करेंगे। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है, हम महिलाओं का फैशन, अगर महिलाएं फैशन करती भी हैं तो आप पुरुषों के लिए ही तो करती हैं, सच समझ कर एक दूसरे के सामने ही तो जाते हैं। तो ये फैशन जो है जो बदलता रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैशन केवल महिलाओं का बदला है। फैशन इंडस्ट्री में फैशन जो है फिल्मों के साथ बदला पुरुषों के लिए भी है। एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। कल शायद कोई एक तरह का पैंट जो पुरुष पहना करते थे आज महिलाएं पहनकर घूम रही हैं। तो बहुत सारे बदलाव आए हैं फैशन के, हम आज उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में ऐसी कोई बात है तो ज़रूर हमसे साझा कीजिएगा। और चलिए चलते हैं पहले गीत की तरफ। और पहले गीत में मेरा तो यही प्रश्न है कि ऐसा कौन सा स्टाइल है, फैशन स्टाइल, जो आपने देखा था, मन में था कि ये पहनना है, लेकिन किसी न किसी कारण से आज तक नहीं पहन पाए। हो सकता है वो पुरुषों का हो सकता है वो महिलाओं का हो। आप अपनी बात रखिए कि कोई एक स्टाइल होगी जो मन ने कहा था पहन लो, या मन ने कहा था ऐसे बाल कटा लो, या मन ने कहा था ये वाली अंगूठी, ये वाली चैन, या कुछ तो होगा जो मन में होगा। उस मन की बात को हमसे कह दीजिए और सुनिए ये वाला नगमा।

हम सुन रहे थे ये बढ़िया सा गीत जिसे हमने लिया मुगले आजम फिल्म से, और हमारे श्रोता ने सही कहा कि इसमें मधुबाला ने अनारकली सूट पहना हुआ है। लता मंगेशकर की आवाज़ और साथियों की आवाज़ में सुन रहे थे इस गीत को। शकील बदायूं ने लिखा और नौशाद ने संगीत से सजाया। हम जो ये गीत सुन रहे थे, इस गीत में यानी इस फिल्म में मुगले आजम फिल्म की पोशाकें मक्खन लाल एंड कंपनी के द्वारा डिज़ाइन की गई थी। दिल्ली के कारीगरों ने इसे सिला था और इसके लिए जरदोजी जरी सूरत के विशेषज्ञों ने इसका काम किया था। मखमल रेशम ब्रोकेट जैसे महंगे और प्रामाणिक कपड़ों का भी इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको बता दूं, पहले जो होता था कि कोई कंपनी वाले फिल्मों को डिज़ाइन करते थे, फिल्मों के कपड़ों को डिज़ाइन करते थे। अभी ड्रेस डिज़ाइनर का जो चलन था वो आया नहीं था फिल्मों में। कब आया था थोड़ी देर बाद उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब चलते हैं हमारे श्रोताओं के मज़ेदार बातों की तरफ। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक तारा बोले टुन टुन क्या कहे ये तुमसे, तंग पेंट पतली टांगें लगती हैं सिगरेट जैसे। उसके साथ ही लिखते हैं, भाभी की उंगली में हीरे का छल्ला, हीरे का छल्ला पहना बहुत दिन पहले बॉटम आज साड़ी पहन शर्माई, बड़ी खूबसूरत सी बात वो लिख रहे हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि हालांकि हमारे पुरुष श्रोताओं ने कहा कि इसमें हम क्या कमेंट करें, पर हमारे एक श्रोता ने बड़ी संजीदगी से बड़ा प्यारा कमेंट किया है। वो लिखते हैं कि प्राचीन काल में बिना ब्लाउज और पेटीकोट की साड़ी शरीर पर लपेटी जाती थी। हाँ, ये नौगजी साड़ी होती थी जिसे पूरे शरीर पर लपेटा जाता था, उसी से एक ब्लाउज नुमा एक तैयार कर लिया जाता था और वही पेटीकोट बन जाता था, वही साड़ी होती थी, एक ही साड़ी होती थी, एक ही कपड़ा होता था। उसके बाद फिर ब्रिटिश काल में ब्लाउज पेटीकोट का प्रचलन चालू हुआ। उसके बाद अब वो कहते हैं कि आजकल महिलाएं प्री ड्रेप्ड साड़ी, कैप स्टाइल, रफेल और जैकेट स्टाइल साड़ी पहनना पसंद करती हैं। इसके अलावा साड़ी को बेल्ट के साथ पहनना भी एक बहुत बड़ा फैशन स्टेटमेंट बन गया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, फैशन बदलता जा रहा है पर कपड़े तो लगभग वही हैं। तो इसके साथ साथ हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में महिलाओं के फैशन का नाम आते ही सबसे पहले उन्हें याद आती हैं साधना। अच्छा, माथे पर हल्की जुल्फें, फैशन कौन भूल सकता है। और इसके साथ ही वो बहुत सारी बातें इसमें लिखते हैं। इसके साथ ही वो लिखते हैं कि फैशन का क्या कहना, हमारे हर ज़माने में फिल्मी सितारों का फैशन देखते हुए अपनाया गया। मेरी मम्मी को नरगिस जैसी साड़ियां पहनने का शौक था और उन्हें, यानी वो लिखते हैं कि मुझे इंदिरा गांधी जी की साड़ी का स्टाइल पसंद है और आज भी उसी स्टाइल में साड़ी पहनती हूँ। क्या बात है, बढ़िया बात है, ऐसी फैशन ही तो हमें बनाता है, जोड़ता है किसी के साथ में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बदली है वो फैशन है। आज स्कर्ट का कुर्ता तो कल स्कर्ट का, सही बात है, फैशन के पीछे पागल होते रहते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छी बात कहती हैं, कहती हैं कि फैशन चाहे जितना बदले मगर मेरा तो मानना है कि फैशन कितना भी बदले आप वही पहने जो आप पर फबे फबे भी। और दूसरी बात ये भी होता है, एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं, कैरी करना यानी संभाल पाना। हम जिस वस्त्र को अच्छे से संभाल सकें वो पहने तो कितना अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमने जो फैशन अपनाया वह अमिताभ बच्चन से प्रेरित होकर अपनाया, उनके बालों का हेयर स्टाइल, आधे कान ढके हुए और इस टाइप की कटिंग और पैंट में जो बेल बॉटम टाइप का था उसके नीचे काफ़ी फैला हुआ रहता था, पैंट की मोहरी ज़्यादा बड़ी होती थी जी। वो फैशन बहुत चला और बहुत लोगों ने उसे अपनाया और हमने आपसे प्रश्न पूछा था बड़ा सरल सा कि आपको ऐसा कौन सा है स्टाइल जो पसंद आया था पहन नहीं पाए। तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अच्छा, एक बहुत अच्छी बात लिखी है, अनारकली अब फैशन में आई है नए कलर में, स्त्री वर्ग पहनती नहीं है, अब आम वर्ग में फैशन में इसे ज़्यादा अपनाया है, ज़्यादा मोटी स्त्री अपना पेट छुपा सकती है। नहीं देखिए क्या है, ये जो चीज़ें हैं जैसे अनारकली है वो बड़ा अगर उसे हमारे कॉटन के कपड़ों में, सूती कपड़ों में बना लिया जाए तो कितना अच्छा होता है ना, पहनने में कितना सुकून मिलता है। इसके साथ हमारे श्रोता बहुत सारी बातें यहाँ पर लिख रहे हैं फैशन के बारे में। और मुमताज़ जी दुपट्टा बालों में लगाती थी, वो उन्हें बहुत पसंद है और पर ना बाल तब वैसे थे ना कॉपी करना आया, सो मन की बात मन में रह गई। मुमताज़ की अदायगी को कौन नहीं अपनाना चाहेगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ और ये अगला गीत है उसी हेयर स्टाइल को लेकर जो हेयर स्टाइल तब से लेकर आज तक फैशन में है। एक टाइम था जब ये आई थी और आज का वक्त है जब ये है, और इस स्टाइल को केवल इसलिए बनाया था क्योंकि माथा चौड़ा था अभिनेत्री का और माथा छुपाना था। चलिए सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम बता दीजिए।

हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में यह गीत साहिल लुधियानवी के शब्दों से सजा और संगीतकार रवि ने इसे संगीतबद्ध किया। और हमने आपसे पूछा था एक प्रश्न कि ये कौन सी फिल्म का गीत है, और बहुत सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं इस गीत को सुनकर। हमें भी प्रसन्नता होती है जब आपके मन का कुछ हम सौंप पाते हैं। तो हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत पसंद है ये गीत और ये है वक्त फिल्म का खूबसूरत सा गीत। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया बातें आप लिखते जा रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बताया कि दिल को छू लेने वाला ये गीत है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि साड़ी की फैशन रैपिंग सब चल रही है और बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि उन्हें पैंट पहनना अच्छा लगता है और स्पोर्ट्स लुक में दिखना अच्छा लगता है। तो बढ़िया बात है, अगर आपको स्वयं को उसमें देखकर अच्छा लगता है तो अवश्य वैसे दिखें। और हमारे श्रोताओं ने कहा कि एक श्रोता ने कहा कि फैशन तो रोज़ बदलते हैं, इसलिए इसमें ना ही फंसो तो अच्छा है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये बात भी आपकी सही है कि वैसे जिसको जो अच्छा लगे सो वही करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं पहले फिल्मों में देखा है कि हीरोइन कुर्ता साइड से बंद होता था और टाइट भी बहुत होता था और उनका बैक वाला हिस्सा अलग से दिखाई देता था। जी, ये फैशन का ट्रेंड बदलता जा रहा है। और यही फैशन वाली बात में हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं तो बचपन से बचपन तक फैशनेबल हूँ, चाहे कुछ भी हो। पिता की पहली संतान थी तो 70 के ज़माने में फ्रॉक वेल बॉटम दिखते थे। बचपन से लेकर 10वीं तक 12वीं तक फ्रॉक्स मिडी फ्रॉक्स पहने थे, साथ में को कलर की सैंडल गॉगल्स फ्रेम वाले अब तक नहीं छूटे, बस सैंडल छोड़ के पैर तोड़ने क्या इसलिए वो सैंडल नहीं पहनती। HMT टाइटन की घड़ी के साथ अब बालों का बताएं रीना राय वाली स्टाइल अपनाई है, तो सामने के कटवा के कानों के पीछे रखवाए थे। बाबा के हाथ से कई बार मार भी खाई लेकिन फैशन नहीं छोड़ी, क्या बात है। और हमारे श्रोता ने लिखा कि फैशन से याद आई 1983 में जितेंद्र श्रीदेवी की मवाली फिल्म आई थी, फिल्म देखी, उनके गाने की ड्रेस पसंद आई, अगली ही दीपावली पर वही ड्रेस अपनी दीदी को दिखा कर बनवा ली और इन्होंने उस ड्रेस को पहना, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोता ने कहा कि अनारकली के बारे में वो लिखती हैं कि वार्डरोब भरा रहता है और शिफॉन और सिल्क की साड़ियाँ, बनारसी कॉटन, क्या ये तो बात सही है कि अलग ही बात है। उन्हें घूंघट में फिल्म घूंघट की वीना रॉय की शिफॉन की लहरिया साड़ी पहनती हैं जो इन्हें पसंद आ गई थी हमारी एक श्रोता को, और शादी के बाद उन्होंने वही साड़ी बाजार में दिख गई, झट से खरीद लिया और पहनकर सबको बताई कि घूंघट वाली ही वीना रॉय ने पहनी है। और रंगोली चित्रहार में उस गाने को देखती हैं तो उन्हें अपनी वो साड़ी याद आ जाती है, क्या बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कस्बा नुमा शहर में रहते थे, महिलाएँ आपस में मिलकर मैटनी शो फिल्म देखने जाया करती थी, बगल वाली एक मुंह बोली बुआ थी वह उनके साथ गई, साधना और अनीता का पहना हुआ घाघरा सेट अच्छा लगा, अब उसके डिजाइन को कैसे आंखों में बसा जाए, तो फिर से वह जुगाड़ करके लगातार 3 बार उस फिल्म को देखने गई,

तब उन्हें डिजाइन ने एकदम से वही गरारा बनाया था अपने लिए, और जब कॉलेज पहनकर गई तो बड़ी फक्र से कहती थी, यह मैंने महबूब की हीरोइन में जो पहनी है उसी को देखकर बनाया है। बहुत बढ़िया बात है, ये भी अपने आप में प्यार है। और 10 साल पहले बहन की हेयर स्टाइल पापा ने चेंज करवाई थी और साधना कट करवाई थी, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। अब यही श्रोताओं की बातों के बीच में मुझे एक बात याद आती है कि एक बार पढ़ा था कहीं कि भानु अथैया जो थी वो भारत की सबसे पहली और प्रतिष्ठित कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी, और 1956 में आई गुरुदत्त की सुपरहिट फिल्म CID से उन्होंने शुरुआत की थी, और उन्हें गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला था 1982-83 में। और उसके बाद 1973 में उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों के लिए बहुत सारे कपड़े बनाए थे और डिज़ाइन किए थे। तो ये भानु अथैया जो थी इन्होंने ही 1968 में आई ब्रह्मचारी फिल्म की इस ड्रेस को बनाया था, यानी इस साड़ी को बनाया था जो गीत में हम देखने वाले हैं। अब आपसे मेरे पास से 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि अगला जो गीत है वो किस फिल्म का है, तो बस उस फिल्म का नाम बता दीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप फटाक से पहचान जाएंगे। और दूसरा प्रश्न ये है कि एक पल के लिए आँख बंद कीजिए, आँख बंद कर ली, अब कौन सी हीरोइन दिखी है आपको, ज़रा उसका नाम लिख दीजिए। ये बात पुरुष और महिलाओं दोनों श्रोताओं पर लागू होती है। कौन सी हीरोइन आपको दिखी जिस जो आपको बहुत पसंद है, ज़रा उसका नाम हमें लिख भेजिए। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इस फिल्म का नाम।

हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों को, और हमने आपसे पूछा ये प्रश्न कि ये किस फिल्म का गीत है, तो आपने तो बहुत जल्दी पहचान लिया। हमारा गीत शुरू नहीं हुआ उसके पहले हमारे पास संदेश आ गया था कि ये बहुत बढ़िया गीत, ब्रह्मचारी फिल्म का यह गीत है, आपने पसंद किया। उसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, हमने कहा था कि आँख बंद कीजिए और बताइए कौन सी हीरोइन दिखाई दे रही है। तो एक श्रोता तो लिखते हैं, मुझे हर हीरोइन की सूरतें एक जैसी सुंदर दिखती हैं। सही बात है, इसमें आपके घर में रहने वाली हीरोइन भी होनी चाहिए। उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, श्रीदेवी, मीना कुमारी, किसी को श्रीदेवी की ड्रेसेस याद आ गई, किसी को, अच्छा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बंद आँख से मैसेज कैसे लिखें आँख खोलने के लिए, तो कही हाँ हाँ आप आँख खोल सकते हैं और आँख खोलकर संदेश भेज सकती हैं। इसके साथ ही बहुत सारे श्रोताओं को, किसी को साधना पसंद आई है, किसी को हेमा मालिनी, किसी की नज़रों में कृति सेनन भी है, वो कोई कहता है शिल्पा शेट्टी की फिटनेस जो है वो उन्हें प्रेरित कर रही है आँख बंद करने पर, किसी को मधुबाला दिखाई देती हैं, तो ब्रह्मचारी में मुमताज़ की साड़ी किसी को याद आ रही है, किसी को हरे रंग के दुपट्टे याद आ रहे हैं, तो किसी को कुछ नया बड़ा खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है जो याद आ रहा है। देखिए ये जो बात है ना, ये बात हमें हमारे सेंसेस से जोड़ती है कि हमें किसका क्या पसंद आ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बंगाली सीनियर सिटीजन अपने हर वैवाहिक सांस्कृतिक फंक्शन में धोती कुर्ता पहनते हैं। जी बिल्कुल, और उसी का प्रयोग कई सारी फिल्मों में भी किया गया है, इस बात को हम मानते हैं। चुन्नी बाबू को ये याद कर रही हैं, जैकी श्रॉफ को उनके धोती दुपट्टे के साथ में। हमारे श्रोता कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के कपड़ों की बहुत नकल करी है उन्होंने, टाइट पैंट, टाइट शर्ट, हील वाले शूज़ और उन्हीं की तरह इतरा के चलना। अच्छा, और किसी ने लिखा है कि हमें तो काजोल याद आई देखकर। जी ये देखने की बात है, सोचने की बात है कि हमें कब कौन कहाँ कैसे याद आता है। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कुछ और कि मेरे दोनों लड़कियां और पत्नी जब कभी बाहर घूमने जाती हैं तो सलवार सूट और जीन्स पहना कर ले जाती हैं बेटियां माँ को, क्योंकि घूमने फिरने में आसानी होती है, बस और ट्रेन में चढ़ने उतरने में आसानी होती है, हालांकि वो घर पर तो साड़ी ही पहनती हैं। और हमारे श्रोता बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि कभी कभी हम ओल्ड फैशन समझकर ड्रेस अलमारी के कोने में रख देते हैं, जो बाद में कभी नए फैशन के रूप में लौटता है, तो फिर हम उसे फिर से ड्राई क्लीन करा कर पहन लेते हैं। कितना बढ़िया आइडिया दिया है आपने वस्त्रों के फिर से उपयोग का। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है, अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले तो भाषा के साथ कपड़े, बोली, सब बचकूच बदला हुआ दिखाई देता है, फैशन बदलता है, लोगों की संस्कृति, आराम और व्यक्तित्व को दर्शाता है। आजकल सस्टेनेबल फैशन यानी पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों का चलन है, लेकिन फैशन सिर्फ महंगे कपड़े नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी पसंद और बॉडी टाइप के हिसाब से कोई भी स्टाइल आप चुन सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने पूछा है, शर्मिला के जूड़े सबसे अलग थे, पता नहीं सच होते थे या विग पहनती थी, हालांकि उनके बाल तो बड़े दिखाई देते हैं,

0: होगा ना। ऐसी कौन सी ड्रेस है जो आपने पहनी थी कभी और उसके साथ फोटो खिंचाई थी, भारत के या विदेश के कहीं भी आप गए हो घूमने के लिए और वहाँ की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचाई हो आपने या आपके परिवार में किसी ने, तो जरूर साझा कीजिएगा और बताइए अगले गीत के गीतकार कौन है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ, और आप सबने सही पहचाना आनंद बख्शी के बोल। अब एक रोचक जानकारी इस फिल्म को लेकर, इसकी ड्रेसेस को लेकर मिली कि इस फिल्म के जो कपड़े हैं, लुक्स हैं, उनको मुख्य रूप से राज कपूर ने खुद ने डिज़ाइन और स्टाइल किया था, पर इसमें इनका साथ करने वाले बिन रामानी, जिन्होंने वार्डरोब स्टाइल सजाई थी, सत्यवान और बीआर लक्ष्मण इसके टेलर थे और उन्होंने पूरे इन ड्रेसेस को बनाया था। कितना दिमाग और कितनी सोच लगती है एक फिल्म की एक ड्रेस को बनाने के लिए, ये भी अद्भुत कला है अपने आप में, और इस कला को भी हम सब याद रखते हैं। और जब हम याद रख ही रहे हैं तो हमें याद है कि हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न बड़ा प्यारा सा था, बड़ा रोचक सा था कि आपने कभी कोई ऐसी तस्वीर खिंचाई है क्या। तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे अच्छे उत्तर दिए कि वो एक बार शिमला गई थी, बहनों के साथ फ़ोटो खिंचाई थी, वह उनके पास में है, कोई असम घूमने गया था तो फ़ोटो खिंचाई थी, उसे संभाल कर रखा है, कश्मीरी लिबास में 300 रुपये के फैशन के साथ रोजी रोटी भी चलती है और उन्होंने वहाँ जाकर फ़ोटो खिंचाई थी, क्या बात है। मणिपुर में भी फ़ोटो खिंचाई हमारे एक श्रोता ने, उनकी जेठानी, किसी की जेठानी कश्मीर गई थी तो वहाँ के कपड़े पहनकर उन्होंने फ़ोटो खिंचाई और पर्स वहीं भूल कर आ गई, जो कि उन्हें बाद में मिला नहीं, इस बात का जिक्र भी वो कर रही हैं। उसके साथ ही हमारे श्रोता बताते, बहू जापान गई थी तो वहाँ की पारंपरिक पोशाक किमोनो में फ़ोटो खिंचाई थी, वही पोशाक जो आशा पारेख ने सायोनारा वाले इस गीत में पहनी थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी दी, वो कहते हैं बॉबी के इस गाने में अकार्डियन जो है वो स्वर्गीय सुमित मित्रा ने बजाया था। जी, बहुत रोचक जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता ने बताया कि छठी कक्षा में थे तब उन्होंने बॉबी देखी थी, और श्रोता बता रहे हैं कि संदर्भ मुझे याद आता है जब बॉबी पिक्चर लगी थी तो ये लोग ये नहीं पूछ रहे थे कि बॉबी देखी या नहीं, लोग ये पूछ रहे थे कितनी बार बॉबी फिल्म देखी। बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता ने किसी ने कश्मीर में फ़ोटो खिंचाई है और किसी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो बताया बहुत सारी बातों को। उन्हें एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सबसे अच्छा ड्रेस सैनिकों का लगता है, उन्हें देखते ही अपने आप हाथ सैल्यूट करने लग जाते हैं, क्या बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि डल झील में उन्होंने फ़ोटो खिंचाई थी, और हमारी श्रोता बताती हैं बॉबी फिल्म का याना, इसकी ड्रेस मैंने और मेरी दीदी ने एक बार बनवाई थी, नोट बैंक की टॉप पहनते थे, स्काउट पहनते थे, और बड़े फ़ोटो भी उन्होंने इस बात को लेकर खिंचाई है। तो ये सारे हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं, और इन श्रोताओं की इन उत्तरों के साथ में हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और हमारे श्रोता बता रहे हैं कि फैशन हर वक्त बदलता रहता है, और स्कूल कॉलेज भी मैं भी बहुत फैशनेबल रहे हैं, वो बड़े बाल रखते थे, स्टाइलिश कपड़े पहन के स्कूल जाते थे, कई बार स्कूल में गुरुजी से पिटाई भी होती थी। हाँ, वो दौर बड़ा अच्छा था जब गुरुजी पीटा करते थे, और हमारे गुरुजी तो कहते थे गुरुजी मारे धम्म धम्म विद्या आवे छम छम शायद आती होगी, इस बात से ऐसा हम मान कर चलते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फैशन कभी पुराना हो नहीं सकता, फैशन एक शब्द है, और उसके साथ में उनका, उन्होंने ब्लाउज़ की बड़ी अच्छी वो बताई हैं कि पहले पफ वाली बाह और जो दादी नानी पहनती थी वो वाले ब्लाउज़ अब फिर से आ गए हैं। हाँ, कॉलेज में पैरेलल पहनते थे, प्लाजो पहनते थे, अब वापस आ गए हैं, और रेखा की दो चोटी वाले बालों की स्टाइल बहुत लोकप्रिय है। जी, इतनी अच्छी बातें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अब एक बात और हमारे मन में आती है कि जो कपड़े होते हैं वो कभी कभी बड़ी तरीके से दिखा देते हैं, जब रंगमंच में आप होते हैं या फिल्मों में होते हैं तो कपड़े आपकी स्टाइल को बताते हैं कि अगला मूड

क्या है। अब हम अगर अगली फिल्म का ये गाना ले लें तो इसमें जो कपड़े हैं उन कपड़ों को मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किया है, और उन्होंने पहले जो एक्ट्रेस है यानी हीरोइन जीत यानी करीना कपूर के कपड़ों को बड़ा बेफिक्री वाले कपड़ों में दिखाया है, और थोड़ी देर बाद जब उनका दिल टूट जाता है तो सलवार सूट में दिखाया है। कपड़े भी आपकी संजीदगी को दिखा देते हैं। वैसे ही अभिनेता आदित्य यानी शाहिद कपूर को भी पहले बड़े संजीदा कपड़ों में और बाद में बेफिक्री में दिखा दिया है। तो ये दोनों चीज़ें आपके मूड को भी यानी आपकी फिल्म की कहानी को भी दिखाते हैं, तो कपड़े कुछ इस तरह से दिखाते भी हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला ये गीत, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है, और एक बात और, सबसे सुकूनदायक वस्त्र कौन सा है जो पहनकर आप अपनी पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं, सबसे सुकूनदायक वस्त्र आपका कौन सा है? अगर हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए, तो हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे हमें सलवार सूट में बड़ा आराम मिलता है, सुकून मिलता है। आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसमें आराम मिलता है, बताइएगा।

हम सुन रहे थे जवी मैट फिल्म का यह गीत इरशाद कामिल के बोल प्रीतम के संगीत के साथ, और हमने आपसे पूछा किसके गायक कलाकार कौन है, आपने सही पहचाना उस्ताद राशिद खान। और इसके साथ हमारे श्रोताओं से हमने एक और प्रश्न पूछा था कि आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जो बड़ा कंफर्टेबल लगता है, बड़ा सुकूनदायक होता है तो वो आप पहनते हैं। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें हल्के रंग की सूती साड़ी जो है वो उन्हें पसंद है। इसके साथ ही कोई लिखता है कि हाई हील वाले जूते, हीरो जूते पहनते थे वो उन्हें बहुत पसंद थे, उन्होंने मंगाए भी थे, जिप वाले जूते, हाँ एक चैन वाले जूते हुआ करते थे, अभी भी फैशन में है, लड़कियां पहना करती हैं उस फैशन को आजकल। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुकून और आरामदायक जो है वो साड़ी ही लगती है और उनके ऊपर भी अच्छी लगती है। वैसे एक बात कही जाए तो भारतीय महिलाओं के ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, सुंदरता, बड़ी सुंदरता के साथ दिखाई देते हैं। उसके साथ कई लोगों ने साड़ी को बोला, किसी ने कुर्ती प्लाजो को बोला। जवी मैट में करीना कपूर ने पटियाला सूट पहना है जो देखते बनता है, जी बिल्कुल। कुछ हमारी एक और श्रोता लिखती है, कुछ कुछ होता मैं भी, काजोल ने शुरू में डंगरी पहनी और बाद में खूबसूरत साड़ियाँ, मूड के मुताबिक उसको पहना गया था, जी बिल्कुल, यही तो बदलाव दिखाने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, ये बात तो कई लोगों ने लिखी कि सफ़ेद कुर्ता पजामा और बिल्कुल ढीला पहनने में बहुत सुकून होती है, पर गंदा भी तो बहुत होता है ना पर ठीक है, सबकी अपनी पसंद है। लॉन्ग टी शर्ट और पटियाला वाला फैशन इससे ही आया था। हमारे कुछ श्रोताओं का ऐसा कहना है कि उनका कोई गीत सुनने में नहीं आया, तो मैं क्षमा चाहूँगी, सुनते जाइए, ये गीत भी तो अच्छे ही हैं, कभी कभी ऐसा भी होना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें गाउन पहनना अच्छा लगता है लेकिन किसी और के सामने जाना अच्छा नहीं लगता, गाउन उन्हें बड़ा कम्फर्टेबल लगता है, जी बिल्कुल, हल्का फुल्का सा वस्त्र होता है। कोई अपनी पत्नी के कपड़ों के बारे में बता रहा है कि उन्हें सलवार सूट पसंद हैं, और कोई अपने बारे में बता रहा है, कोई कह रहा है लुंगी अच्छी लगती है पहनने में, तो किसी ने बताया बनियान और वो पट्टे वाला हाफ पैंट जो होता है वो लोगों को पसंद आता है, किसी को सूती कुर्ती और लेगिंग पसंद है, तो किसी को एक लोअर टी शर्ट में वो किसी भी फैशन में किसी भी कार्यक्रम में भी जा सकते हैं, तो ऐसी कई सारी चीज़ें लोग बता रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि उनका विवाह जो है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ससुराल भी वहीं है, तो उनकी पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ गए थे और वहाँ बहुत सारी फ़ोटो खिंचाई थी जिसका उन्हें याद है। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे एक समय था जब ग्राहक डिज़ाइन देखने के लिए फिल्म दिखाने के लिए आता था और कहता था ये वाली डिज़ाइन बना दो, यानी हमारे जो कपड़े सिलने वाले थे उनको फिल्में देखनी पड़ती होंगी उस समय पे क्योंकि वो डिज़ाइन बनानी होती थी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारे श्रोता लिखते हैं। ऋषि कपूर की स्वेटर और देवानंद की मफलर का फैशन लाकर छा गए थे, जी बिल्कुल, और देवानंद के तो कपड़ों पर बैन भी लगा था शायद, ऐसा कुछ किस्सा भी सुनने में आता है, शायद आपको भी पता हो, किसी को लोअर टी शर्ट में आराम मिलता है और किसी को शर्ट में, किसी को सलवार कुर्ता, किसी को कुछ, किसी को कुछ, हर किसी का अपना अलग

विधान है कि उसे ये पसंद है। और अब हम चल रहे हैं आज की शाम के आज के इस कार्यक्रम के कुछ अंतिम गीतों की तरफ, और ये अगला गीत आप सुनिए और बस बता दीजिए ये कौन सी फिल्म से है। और इस फिल्म के बारे में एक बड़ी रोचक सी जानकारी हमें कहीं से मिली थी, तो वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि इस फिल्म के लिए, चांदनी के लिए भी कपड़े जो बनाए थे भानु अथैया ने बनाए थे, और नीता लुल्ला ने भी इसमें बहुत मदद की थी उन कपड़ों को बनाने के लिए, और बड़ा स्टाइल फेमस हो गया था, मतलब वो बड़ी अच्छी साड़ियाँ थी और लोगों ने उस समय बहुत पहनी भी ये साड़ियाँ। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और बताइएगा ये इस गीत के संगीतकार कौन हैं, नाम पूरा लिखिएगा संगीतकार का।

और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम सुरीला सफ़र यहीं पर समाप्त होता है, परंतु हम आपके साथ वो साझा करना चाहेंगे जो आपने बताया है जी। हमने पूछा था कि इसके गीत संगीतकार कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये दोनों बातें आपने हमें बताई, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आज के दिन हमने बहुत सारी फैशन डिज़ाइन और इन सब की बात की। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले तो लड़कियां पैसे भी देती थी कि जाकर आप यह फिल्म दिखाइए मास्टर जी और फिर वैसा कपड़ा बना दीजिए, तो ये इतनी अच्छी रोचक जानकारियाँ हमें मिली, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। सदा मंगल हो, नमस्कार, प्रणाम, सदा खुश रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran

0: @mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
3: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स हैं।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा

0: सद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। यह दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदम शिलेमा चानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। दो दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अंग्रेजी और हिंदी में दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आइए हम पुनः आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
2: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हम सुन रहे थे शरारत फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शैलेंद्र के पोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे धूल का फूल फिल्म से यह गीत आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल और एन दत्ता ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम. सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं. संतान फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल और दत्तराम के संगीत के साथ. और इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है. आज्ञा दीजिए, सदा सुखी रहिए. नमस्कार.

0: बोले ये दिल का इशारा, आंखों ने मिल के पुकारा,
1: जितना है प्यार का।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: सोनाली पाठक। तो आप सभी को सोनाली पाठक का
1: और मंदाकिनी जोशी का
2: नमस्कार।
1: क्या कर रही हो सोनाली?
2: बैठी हुई हूँ आपके सामने। बैठी
1: भाई मेरे सामने तो बैठी हो, इन दिनों क्या कर रही हो मैंने ये जानना चाहा, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है।
2: बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और बहुत खूबसूरती के साथ आप सामने बैठी हुई हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, एक सुखद अनुभूति मिल रही है।
1: अरे वाह, यही तो होना चाहिए कि जब दो दिल मिलते हैं, दो इंसान मिलते हैं, दो दिमाग मिलते हैं तो सुखद अनुभव होना चाहिए। और ये हमारी जिंदगी में होता भी है सोनाली, हमारे श्रोता भी इस बात को कहते हैं, जब हम अपने श्रोताओं के लिए आते हैं, उनसे कार्यक्रम के जरिए मिलते हैं तो कितना सुखद एहसास होता है हमें।
2: और हम है ना कल्पनाओं के माध्यम से महसूस भी करते हैं ना मंदाकिनी जी, कि हमारे बहुत सारी सखियां बैठी हुई होगी, श्रोतागण बैठे हुए होंगे और वो क्या कर रहे होंगे,
1: हमें सुन रहे होंगे,
2: हमें सुन रहे होंगे,
1: कुछ अचार भी डाल रहे हैं।
2: हाँ, हमारी कुछ सखियां जो है अचार भी डाल रही होगी कि चलिए इधर रेडियो भी ऑन है किचन में और इधर अचार बन रहा है, क्योंकि इन दिनों तो घर में अचार और मुरब्बे बनते ही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत जरूरी भी होता है घर के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं या हमारे घर की जो महिलाएं हैं, पुरुष भी जब ऑफिस जाते हैं, तो अचार और परौठा एक ऐसा भोजन है जो लगभग हर लोग लेके जाते ही अपने टिफिन
2: में। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी थोड़ी सी फीकी बन गई है तो उसमें जो अचार है ना वो उसका स्वाद बहुत बढ़ा देता है खाने का।
1: और कई बार ये भी होता है कि जब घर की गृहिणियां सब्जी बनाने में थोड़ी सी आलस बरत लेती है ना, तो दाल और अचार से काम हमारे घर के पुरुष चला लेते हैं, पता
2: या
1: है?
2: फिर कभी सब्जी कम पड़ गई तब भी अचार से काम चला सकते हैं।
1: और या प्याज का सलाद खाना हो ना, उसमें भी अचार डालकर
2: खा सकते हैं,
1: मस्त।
2: और साथ में मुरब्बे, वो मीठे मीठे मुरब्बे तो बहुत, यानी उसमें आम का मुरब्बा बनता है, फिर करौंदे का मुरब्बा बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, अलग अलग तरह के मुरब्बे बनते है, जो भी हर घर की शान होते।
1: तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम व्यंजनों पर आएंगे ना, तो हमारे श्रोता या हमारी सखियां और सखा तब तक आचार और मुरब्बे पर अपनी जो है रेसिपी लिखकर भेज चुके होंगे
2: कि आपके घर में किस तरह का मुरब्बा या किस तरह का अचार बनता है। कोई मीठा अचार बनाते हैं, कोई तीखा बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके अचार बनाते हैं, तो कौन से तरह का अचार आपके घर में पसंद किया जाता है उस पर हमें लिखकर भेजिए।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे क्या और विषय है आज के?
2: शब्द हमारा विचार आपके। इसमें विषय है संयम।
1: संयम
2: जिसे कहना बहुत आसान है और उसे अपनाना बहुत ही मुश्किल
1: है। बहुत मुश्किल है। और वैसे हमारे श्रोताओं ने संयम पर बहुत कुछ लिखकर भेजा भी है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं सोनाली हमारी सखाओं से, हमारी सखियों से, कि जब आपके जीवन में संयम बरतने की बारी आई तो आपने कहाँ कहाँ संयम खो दिया था
2: या फिर झुंझला उठे।
1: वही बात कि मसलन आपको बाजार जाना है, किसी पार्टी में जाना है, और आपकी धर्मपत्नी ने तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया और आप झुंझला गए,
2: संयम टूट गया।
1: बिल्कुल। या फिर ट्रैफिक में जब आप
2: फंस गए हो और सामने वाली, आपको पता ही नहीं है कि सामने की यानी दो गाड़ियां छोड़ के उसके आगे की गाड़ी बंद पड़ गई है और आप जोर जोर से हॉर्न देते जा रहे हैं कि ये क्यों नहीं चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा है, क्या हो रहा है।
1: और दुनिया भर की बातें हमारे मन से निकलती हैं उस वक्त, है ना, जब हम फंस जाते हैं तो हम धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं ना। और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जहां हम अपना आपा खो देते हैं, तो हमारे श्रोताओं से हम चाहते हैं वो लिखें, संयम क्या है। संयम तो सबको पता है क्या है, लेकिन संयम की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें ये बताना है कि हमने जिंदगी में कब कब संयम रखा और ये कितना काम आया
2: और कब कब खो दिया संयम,
1: वो तो बताना ही है, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों
2: भी है
1: ना।
2: जी। और साड़ियों का संसार, इसमें हम इलकल साड़ी कर्नाटक के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे कुछ श्रोताओं ने लिखकर भी भेजी है इस बारे में जानकारी।
1: बहुत अच्छी साड़ी होती है इलकल साड़ी, कर्नाटक की,
2: नरम मुलायम बहुत सुंदर।
1: तो सोनाली इस बार हम जब बाजार जाएंगे ना तो ये साड़ी खरीद कर लाएंगे।
2: बिल्कुल खरीदेंगे, और इतने सुंदर कलर होते हैं इसकी इलकल साड़ी के,
1: क्या बात है। तो और देखिए, सोशल मीडिया पर वाद विवाद और समय की बर्बादी हम बहुत करते हैं,
2: बहुत ही ज्यादा। यानी हमने सोशल मीडिया ऐप खोले कि उसमें कोई एक विषय पे या कोई एक रील पे इतने लोग लिखते हैं और उसमें घंटों बाद, और फिर लोग वो मैसेज भी पढ़ते हैं किसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा, उस पे भी 250-300 हजारों के लाइक्स होते हैं। तो ये समय की बर्बादी ही है।
1: बिल्कुल, मिलता कुछ नहीं है, है ना, लेकिन हम अपने विचार वहां थोप देते हैं। और अनावश्यक कई बार क्या होता है, साधारण सी न्यूज होती है उसको हम बहुत बड़ी बना देते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, या फिर कोई बहुत ही सेंसिटिव घटना हो गई है किसी की जिंदगी में, उस पर हम अपने विचार अनाप शनाप थोप देते हैं।
2: और कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी, आपस में लड़ाई भी हो जाती है लोगों की, ये तुमने ऐसे क्यों लिखा, तुमने ऐसे क्यों बोला, ये तो ऐसा है वैसा है, और उसमें हमारा बहुत सारा वक्त,
1: समय, और सोचिए दिमागी हालत कैसी हो जाती है उसके बाद।
2: अगर हमें क्रोध आ गया तो हम खुद का बहुत नुकसान कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, तो सोशल मीडिया पे लिखते वक्त पहले तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, फिर ये भी उम्मीद कर लेनी चाहिए कि किस तरह के विचार आने वाले हैं। इन सब में अपना समय बर्बाद करने की बजाय हम कुछ क्रिएटिव लिखें। हाँ, कुछ मुद्दों पर आप आवाज उठाएं, लेकिन उस आवाज का असर दूर तक होना चाहिए।
2: और बस मैसेज किया और छोड़ दिया, उसके लिए पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है
1: कि किसने क्या लिखा और किसने लाइक किया किसने नहीं किया। हम नाराज हो जाते हैं, पर अब हमारे श्रोता नाराज होने वाले हैं अगर हमने गाना नहीं सुनाया।
2: सुनवा देते हैं गीत।

0: तो चलिए दरिया में फेंक दी हमने चाबी, पर हमने अपनी अलमारी की चाबी संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियां होती हैं।
1: हाँ वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो हम अपनी साड़ियां और अपने कपड़े कैसे निकालेंगे भाई।
0: भाई हमारी जो अलमारी होती है उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियां होती है। तो कर्नाटक की साड़ी इलकल अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको जरूर खरीदना
1: खरीदनी
0: है,
1: पड़ेगी है ना।
0: बहुत सुंदर साड़ियां होती है। और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है। हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है, और इन्हीं में से एक है इलकल साड़ी जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट, पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली, और इलकल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के इलकल नगर से है, और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम इलकल साड़ी पड़ा। और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और इलकल में साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले ये साड़ियां विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा थी, लेकिन आज देश विदेश में भी इनकी
1: मांग हो गई है। बिल्कुल सही कहा, और इलकल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई तकनीक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है, बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है, और पारंपरिक रूप से इसमें टोपे तेनी तकनीक का उपयोग किया जाता है जो इसे अन्य साड़ियों से अलग बनाती है।
0: और पारंपरिक इलकल साड़ियों में सूती और रेशमी धागों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। साड़ी का मुख्य भाग अक्सर सूती धागों से और पल्लू और बॉर्डर रेशमी धागों से बनाया जाता है, और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
1: हाँ बिल्कुल, और इलकल साड़ियों में लाल रंग मिलता है, हरा है, नीला है, बैंगनी है और मरून जैसे पारंपरिक रंग जो हैं बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। और इसके पल्लू पर सुंदर धारियां और पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती हैं, बॉर्डर पर विशेष डिजाइन इसकी पहचान बनाते हैं, और कई साड़ियों में मंदिर कला या ज्यामितीय पैटर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
0: और एक इलकल साड़ी केवल एक कपड़ा नहीं है मंदाकिनी जी, बल्कि बुनकरों की कला, धैर्य और मेहनत का परिणाम होती है। हथकरघे पर बैठकर बुनकर धागों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं, और इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इलकल साड़ी जो है कर्नाटक की एक पहचान है और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसरों, त्योहारों या विशेष अवसरों इसमें पहनने की परंपरा रही है, और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
0: और आज इलकल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है
0: घर चल सके,
1: उनको एक आजीविका का साधन मिल सके। और इलकल साड़ी केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा अभी आपने कहा था, ये कर्नाटक की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है, और इसके हर धागे में सोनाली परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के हाथों की मेहनत छिपी होती है। और ये भारतीय हथकरघा विरासत का एक सुंदर उदाहरण है जिसे सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
0: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी कभी कर्नाटक घूमने गए तो आपको इलकल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और क्या होता है ना मंदाकिनी जी, हम साड़ियां तो खरीद ले आते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं है। तो साड़ियों को पहनना भी उतना ही जरूरी है कि कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो, तो साड़ियां जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं का सिर्फ भी वक्त बहुत
1: ज्यादा लगता है,
0: पर थोड़ी तैयारी हमने थोड़े 1-2 घंटे पहले तैयारी करके रख ली कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसके जो उसमें पहनने वाले जो गहने वहने सब निकाल के रखे, तो हम आराम से पहनते जा सकते।
1: और जिनको साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेते हैं, कुछ बहनों को अभ्यास कम होता है तो सीखा भी जा सकता है।
0: और आजकल तो सिलवा भी सकते हैं हम साड़ियाँ, यानी आप उसमें बिल्कुल एक हुक लगाना है और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है, तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है
1: उतना ही समय लगता है, भी पहन उसी तरह से पहना भी जाता है। लेकिन वो खुद जब पहना जाता है ना सोनाली, जब खुद प्लीट्स लगाई जाती है और पल्लू को सजाया जाता है ना, उसका मजा कुछ
0: उसकी
1: और
0: बात
1: होता
0: कुछ और होती है ना।
1: चलिए तो गीत सुन ले,
0: सुनते हैं गीत।

0: हाँ तो सोनाली, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या कुछ करना है इस पर ध्यान हमारा थोड़ा कम हो जाता है और हम सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
1: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदाकिनी जी, तो हमारी एक सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद हमें पसंद नहीं, हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं, जिससे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता
0: क्या
1: है।
0: क्या बात है, क्या बात है, छा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है।
1: तो ऐसी जब
0: बेतुकी बहसों में पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ सार्थक सुने, और विविध भारती एक ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं,
1: और मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है।
0: बिल्कुल, एक पन दो काज है ना। तो आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर, समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली, हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
1: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
0: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं, और विचारों में आपने का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है, और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें, और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
1: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, की जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको ऐसे ही कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया।
0: हाँ, हाँ।
1: तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए। और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है।
0: हाँ, हाँ।
1: तो हम ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है, तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है वो हम बिल्कुल पूरे टाइम
0: बर्बाद कर देती है। और इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
1: है, बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
0: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जो है हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही, और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात लो मैं ये लिख देती हूँ,
1: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा, हाँ। रहूंगी, है ना।
0: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं,
1: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और ये ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं, या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत, ये बहुत गलत आदत है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए,
1: थोड़ा सोचे समझे, संयम से काम ले।
0: वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है, और समझदारी इसी में होती है सोनाली, कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है, हम किस से बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
1: और मंदाकिनी जी, एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है, बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे, अभद्र भाषा का बहुत
0: इस्तेमाल
1: होने लगता है, तो वो एक गलत है। वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह
0: जी,
1: की भाषा का।
0: आप देखिए ना, समाज में कितना गलत संदेश जाता है, हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
1: सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए, समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती संपत्ति है इसको आप जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग, और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
1: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: सोना मेरे सामने भी सोना ही बैठी है सोनाली के रूप में।
1: चलिए हमारे एक साथी लिखते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बेहुदा चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है, मसलन हास्य व्यंग के फूहड़ वीडियो बनाना, फेक न्यूज को वायरल करना, बेसिर पैर की ब्लॉगिंग करना वगैरह। आज के समय की सोशल मीडिया ऐसी बीमारी बन गया है जिससे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रस्त है। सिर्फ वाद विवाद ही नहीं, सोशल मीडिया के यूज ने हमारे बहुमूल्य समय को भी नष्ट कर दिया है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद करना समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि ये एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जहां लोग केवल भावनाओं को भड़काने और मानसिक तनाव का काम करते हैं। इससे उत्पादक चर्चा के बजाय केवल नकारात्मकता और अलगाव ही पैदा होता है। वाद विवाद के नुकसान, ऊर्जा और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव, क्रोध अलग होता है। इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है और इसके साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है। हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार होता है। ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि किए तथ्य साझा किए जाते हैं जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें, और सबसे अधिक किस ऐप्स पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा। और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है। किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे जिससे हम कभी जानते ही नहीं, तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनकी पोस्ट ध्यान से पढ़ ले, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय गुस्से और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है। मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में तर्क वितर्क करने में घंटों निकल जाते हैं। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे।
0: बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहाँ सोच समझकर ही अपने विचार रखें। अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
1: वहीं एक साथ ही लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं और अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुँचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने। और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं सोनाली जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मसलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां, अभद्र बातें करने लग गए हैं। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है, आप सोचिए कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
1: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
0: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है ना, कि जीवन में संयम का कितना

0: ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में, विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में, अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
1: एक साथ ही लिखते कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया, अपने मन पर नियंत्रण रखना
0: बहुत
1: बहुत
0: जरूरी
1: जरूरी है।
0: है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन, वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अनर्थ करने की कोशिश करे, तब खुद को रोक लेना ही संयम है। संयम हार नहीं, ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है, और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। जिसने संयम साध लिया मतलब उसने खुद को जीत लिया।
1: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं, संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती, लेकिन समझदारी की आवाज़ साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं, मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों, भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है, उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पतंगी की वो डोर है जो उसे ऊंचाइयों तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों शोर नहीं करते, लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस
0: क्या
1: होती है।
0: बात है, बहुत
1: बहुत
0: सुंदर
1: सुंदर
0: लिखा है,
1: विचार
0: बहुत
1: जी।
0: सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज की तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है। ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य, मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है, उसी प्रकार जीवन में उपलब्धियां भी समय और निरंतर प्रयास मांगती हैं। बिल्कुल, हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना, तो हम अपना संयम खो देते हैं।
1: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं, कई कठिनाइयां, कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत ना हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा, और आज इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी सखियों और सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखे और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करें, सफलता जरूर मिलेगी।
0: बिल्कुल सही कहा। और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं, जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं, कि एग्जाम नहीं हुए या एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या की ओर चले जा
1: जी
0: रहे हैं। तो ये वही है कि वो संयम जो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए,
1: कि
0: आज
1: इस
0: नहीं तो
1: साल नहीं
0: कल।
1: तो अगले साल आपको परीक्षा
0: हाँ,
1: में सफलता मिल ही जाएगी,
0: जिंदगी
1: और इतना
0: खाली,
1: सुंदर जीवन है
0: हाँ,
1: मिला
0: उसको
1: है
0: हम खत्म कर देते
1: जी।
0: हैं।
1: तो बच्चों को ये हमें कि और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज़ की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते हैं। उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज़ है कि वे बोला कि आज ही चाहिए ये डिश, आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं, आज मांगा है तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज ही लाकर देना, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहें कि ठीक है, आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर लाकर देंगे या
0: हाँ,
1: 2-4 दिन बाद लाकर देंगे। तो
0: बिल्कुल,
1: बचपन से ही उन्हें इस
0: ये
1: तरह से
0: संयम सिखाया जाए। और
1: जी
0: दूसरा वही कि परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है। उनको संयम में रहना सिखाएं। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए ना, कि आप अपने जीवन को ही
1: समाप्त कर दें।
0: समाप्त कर ले, है ना। तो ये संयम हर जगह जरूरी है, और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए। बोलने का
1: कि
0: एक गाना
1: गाना
0: सुनाना चाहिए।
1: सुना

0: मंदाकिनी जी, हमारे
1: जी
0: बहुत सारे साथियों ने, हमारे सखियों ने जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी है। तो आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने लिखा है, कैरी 1 किलो कतलों में कटे हुए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी आधा छोटा चम्मच, इलायची एक पाउडर छोटा चम्मच, उसके अंदर भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कतलों को उबाल ले, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ गुड़ और आधा कप पानी डाले और पकने दे। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कतले डाल दे, इसे मध्यम आंच पर पकने दे। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सोख कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दे। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है। ठंडा होने पर कांच की बरनी में रखे, इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ खाया जा
1: खा
0: सकता
1: सकती हैं। इसका मतलब हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है
0: कुछ मुरब्बे
1: ना।
0: और
1: हाँ,
0: अचार
1: यानी बना रही हैं। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर
0: कर
1: रही
0: रही है
1: है
0: और
1: ना,
0: एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे
1: सुन रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे। तो इसका मतलब हमारी सखियां जो हैं हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं।
0: जी।
2: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया।

0: सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: तो सोनाली, हमारे सभी सखी और सखा जान गए होंगे कि आज के मेहमान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत वो सुन सकते हैं।
4: हम भी सुनेंगे उनके साथ में।
3: बिल्कुल, हम तो सुनेंगे ही और साथ में कैरी का अचार या मुरब्बा भी खाते जाएंगे। ठीक है। तो भाई, एक सखी लिखती है कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है। इसमें कच्ची कैरी है यानी कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए गुड़, चीनी 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्सचर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम, राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दरदरी, कुटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक स्वादानुसार, चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है मूंगफली का या राई का, 1 कप गर्म करके ठंडा किया हुआ लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है, साथ में 10-12। ठीक है। आम को तैयार करना है, कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छीलकर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट ले, क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लें और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गर्म किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघलकर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रसा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अचार खा सकते हैं।
4: मेरे तो मुंह में पानी आ गया। थेपले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना।
3: क्या बात है, तुम्हें तो थेपले की भी याद दिला दी
4: है। अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं और 1.25 किलो चीनी है, 4 से 5 कप पानी है, 4-5 इलायची, फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोंद ले ताकि चाशनी अंदर जा सके, हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमे आंच पर पकाएं। जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें। ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरें। मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
3: हाँ, वही एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा अचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल, सिंपल सा अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का अचार डालने का सही समय है, वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते हैं, दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं। बस फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेते हैं, जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और इसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं, तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सुखा कर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
4: और अब क्या करना है?
3: अब तो हमें बहुत अचार खिला दिया है श्रोताओं को हमने।
4: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं।
3: बिल्कुल सुन लेते हैं।

0: हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये गीत आप ऐसे वक्त सुनाते हो जब जाने का समय हो जाता है, अभी न जाओ छोड़कर। एक सखी ने लिखा, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर बैठ गई।
1: लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अब रुकेंगे नहीं नहीं
0: नहीं। तो इजाजत लेते हैं आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमेरिका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते की जानकारी देंगे। श्री रूबियो का संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। प्रवर्तन निदेशालय गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुद्दुरून और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको में ग्रुप के में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था, जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे, उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसें और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग ख़त्म हो।
1: क्या बात है।
0: तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में, यही करना है या यहीं रहना है, तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो।
1: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में
0: उस वक्त? हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण उनसे मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था, कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी, और मैं चाहूँगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले।
1: जी जी।
0: और अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूँगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनिएचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारिका जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारिका वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक, इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है। तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है, और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी, तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन करने
0: हिला देने वाला था, और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जब फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें पांच फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ मैंने उस वक्त फिर बनाया, जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कम्प्लीटली। और मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा, किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्ज़ाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्ज़ाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीजन में थे।
1: क्या बात है। बढ़िया।
0: तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले।
1: जी जी।
0: और हमारे जो भी देखने वाले थे, जांचने वाले थे, उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहाँ पर जंगल में वन प्राणी हैं और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करनी
0: पड़ती है? मैं तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपनी जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूं उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूं और मैं चाहता हूं कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियां होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियां दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में
1: जी।
0: फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो हैं आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को, या उसको। मैं तो देखता हूँ कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
1: जी जी, चित्रकला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
0: मैं सुनाना चाहूँगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
1: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
0: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज़ है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को ख़ास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
1: जी,
0: है।
1: जी, और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे?
0: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज ख़त्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे, और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
1: ओह क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं
0: जी।
2: ओ शाम कुछ

0: थी।
1: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
2: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जा कर के उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज़ जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है,
1: मिलता है। कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
2: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं बनाता हूँ क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था, अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है, मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था और वो इतना ज़्यादा चमकीला और इतना ज़्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया और रोज़ सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया।
1: गजब।
2: और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार, आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
2: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था, और
1: क्या
2: वो
1: बात
2: एक बहुत
1: है।
2: बड़ी चुनौती भी था। किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हरी रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला रंग लगाना सबसे मुश्किल काम
1: हम
2: है।
1: अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे, हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा, और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग। जी आगे
2: हाँ, तो
1: बताएं।
2: मुझे मतलब फिर रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया। और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है, ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, कई रूप भी नज़र आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नज़र आने लगती हैं। किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है।
1: जी
2: किसी चित्र को समझने की ज़रूरत नहीं है, उसे देखने की ज़रूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है, और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज़ अगर देखते हैं तो रोज़ आपको एक नए कुछ उसमें चीज़ें नज़र आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है
1: जी
2: लगातार। तो ये जो चीज़ें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल। यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनवाएं?
2: मैं चाहूँगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही
1: फुर्सत
2: फुर्सत
1: की
2: के रात
1: रातें,
2: दिन।
1: मौसम फिल्म का गाना है।
2: जी हाँ,
1: सुनते हैं यही गाना।
2: दिल

0: गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की, रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई, और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बेंगलोर में दिया था एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
0: जी। और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आए और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है ज़रा बताइए।
1: वो मेरा पहला वनमैन शो था बम्बई में और जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चस्य हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे, तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे। और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूं तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख करके मतलब जाहिर है एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चस्य हविस आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी डेविडा दोनों थे, और फिर उन्होंने हमसे बात करी, तो काफ़ी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी ख़ास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो ख़रीदा करते हैं, और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
0: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सब के लिए फख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है, और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ ख़ास बारीकियाँ सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने?
1: हाँ नहीं, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला, और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा करके कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी, और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो बोले यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था, तो इतनी ज़्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही खुश हुए थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद कराओ तो अपन लंदन में रिलीज़ करेंगे, और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति

0: इशू हुआ, बाय द टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ, हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वन मैन शो हुआ था प्राग में, और वहाँ पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ, और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं सकी, और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ, तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वन मैन शो किए थे प्राग में, और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने, और मैं अभी उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मेरे 80 चित्र, वो जो उनको मैंने भेंट करे थे, वापस लौटा दिए। और वो उन्होंने 80 चित्र जो हैं अपने घर के एक कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे, और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे चित्र 1956 के पहले के थे
1: जी,
0: और हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैम्प नाम की पेंटिंग से होता है, उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं। मगर ये सारे काम जो हैं 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे और बड़े खूबसूरत काम थे, ये उस जर्नी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं।
1: तो आपने,
0: तो मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ, तो अपन दोनों चले चलेंगे प्राग और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊँगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई, तो वो हो नहीं पाया,
1: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
0: तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना।
1: जी, तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो, क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी।

0: यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी भी आपने लिखी है, अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया और इनके भीतर सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी हैं, तो आप इसके बारे में बताइए कैसे बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आई, प्रेरणा मिली आपको?
1: हाँ, मैंने है ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रजा साहब की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बीबी कारंत थे उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे, बीमारी के दिन थे, उस दौरान कन्नड़ की एक प्रसिद्ध राइटर हैं वैदेही, उनको बोल करके अपनी ऑटोग्राफी लिखवाई थी कन्नड़ में।

0: और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है। ही वॉज ए ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया और वो अभी छपने के प्रोसेस में है
1: जी।
0: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे और फिर बहुत ही, जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातिस का नाम लिया जाता है। तो उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी, मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से
1: जी जी।
0: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह कर के अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पे जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते, यहूदी होने के नाते उनको कई चीज़ों से वंचित रहना पड़ता था, मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूँ। ये सारा उन्होंने भुगता मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त। वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे देख सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली।
1: ये बहुत बड़ी बात है और एक वैचारिक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर। हाँ। तो हम सबको पढ़नी है ये किताब। और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और दरस पोथी और शीर्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं को?
0: ये जो मेरी किताबें हैं इन सारी किताबों में मैंने चित्रकला पे और चित्रकारों पे जो बातचीत करी है वो है इन सारी जगह में, और उसमें कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो मतलब पहली बार किसी ने चित्रकला में उसको छुआ है और उस पर बात करी है। तो ये सारे निबंध हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग चित्रकारों के ऊपर भी हैं और चित्रकला के प्रश्नों पर भी हैं। तो ये मेरे निबंधों की किताब है एक तरह से, जो 5-7 है, एक उनके बारे में भी है शीर्षक नहीं, दरस पोथी और अचंभे के रोने के अलावा। तो इस तरह से मतलब काफ़ी लिखने का मेरा कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पे लिखा है।
1: जी जी।
0: जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी
1: जी।
0: वैसे ही मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उन पे लिखी। तो ये सारे जो आर्टिकल्स या जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो।
1: जी जी। तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन?
0: मेरे लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना तो कभी कभार है, मतलब मैंने ऐसा कुछ खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ स्वामीनाथन के साथ मेरे जो पर्सनल संबंध थे, इतने साल 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया भारत भवन में, उसके बाद 14-15 साल उनके साथ संपर्क रहा, तो एक लंबा संपर्क था और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना। क्योंकि जब हम लोग 74 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहाँ पर ट्रिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट रहे तो वहाँ कैनॉट प्लेस पे एक हमने बैनर देखा, 6 हू डिक्लाइन ट्रिनाले। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी 6 लोग हैं, 6 कलाकार हैं जिन्होंने ट्रिनाल को जो है कैंसिल आउट किया। तो धूमिमल आर्ट गैलरी में वो एग्जीबिशन थी तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था तो मैं तो सबसे जूनियर था तो सबसे पीछे ही था। तो मैंने भी अपनी स्केचबुक आगे जब बढ़ाई तो स्वामी जी ने एक ऐसे पलट के देखा, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड हमारी नज़रें मिली होंगी, उन्होंने ऑटोग्राफ करके लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए
1: जी।
0: फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: क्या बात है।
0: तो मेरे लिए तो एकदम से मतलब
1: आश्चर्य हुआ।

0: आश्चर्य था, क्योंकि मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूँ, बट स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी
1: जी
0: भीड़
1: जी
0: थी, इतना सारा क्राउड था, बस उन्होंने वो स्केचबुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना
1: बिल्कुल
0: उड़ती सी नज़र, बट ही रिमेम्बर्ड वेरी
1: जी
0: क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके हैं.
1: जी यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया?
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी
1: इस
0: इस
1: बात का
0: बात का
1: वादा
0: वादा
1: कर
0: कर
1: लो,
0: लूँ
1: सुनते हैं ये
0: जी
1: गाना।
0: हाँ.

0: गाने से पहले आपके लेखन पक्ष की बात हो रही थी, कुछ अनुवाद भी आपने किए हैं बहुत सारे, तो उन अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा की एक छोटी सी किताब है, तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक स्वीडन के नॉवेलिस्ट हैं अग्नेता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफ़ों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नज़र नहीं आता है उसकी जो नायिका है उसका। तो एक मैंने उसका अनुवाद किया, और ये जो बाबा कारंत के ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद। तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है, मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है वो।
0: जी जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस, ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
1: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है, और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं, और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं हैं। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत ज़रूरी पक्ष है। अदरवाइज़ कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुँचे कैसे। तो वो जो पहुंचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं, या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है, और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
0: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक
1: जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ तय कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना। तो वो जो बनाना है, खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
0: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है, और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
1: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारी चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना, समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं।
0: जी।
1: तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक होकर के, एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज़ समझने वाला, मतलब अपनी तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है, और वो सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियाँ हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब लंदन में हुआ तो, मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो।
0: जी जी जी,
1: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फांक है वो बहुत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है,
0: जी,
1: क्योंकि
0: जी।
1: जर्मन आदमी भी मनुष्य हैं और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल जानवर तो देखते नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। तो वो शायद रंग ही हैं जो मनुष्य को संबोधित हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज़ थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जैपनीज हो, चाहे वो मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं।
0: जी, जी,
1: और मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो ये जो चीज़ें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो एक अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विचार और अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
0: जी जी, यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
1: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा।
0: जी, सुनते हैं
1: ये वाला गाना। सुनता है।

0: इस गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: हम मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो हैं अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही इसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीज़ें सीखते समझते और बरतते हैं और उनका एक नया रूप सामने आता है, वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है और इसीलिए कलाएं जो हैं हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
0: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें वो सब?
1: ये जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
0: जी जी।
1: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उसका 4 साल का 5 साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है और वो उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज़्यादा सीख सकेंगे और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
0: जी, ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये ज़रूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाएं तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया।
1: हाँ,
0: ये भी थोड़ा सा बताइए।
1: ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं और आप रंगों को पास पास रख कर के भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको लगातार काम करने से ही आती हैं। रदा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास ली जाएगी, अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे वाले के पास से ली जाएगी। तो जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज़्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं और फिर उसने अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
0: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है ये बताएंगे?
1: इसमें दोनों तरह की चीज़ होती हैं। कई बार चित्र जो हैं खुद भी इतने ज़िद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा होता है। ये एक तरह की परिस्थिति पे भी निर्भर करता है कि कब आप किस मूड में किस तरह से उस काम को शुरू किए हैं और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है, आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहाँ जहाँ आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं तो आप अगर उनका पीछा करने लगते हैं तो शायद चित्र बिगड़ सकता है, मगर आप रोक कर रखते हैं अपने को, अगले दिन आते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते हैं तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ा था। तो ये जो एक मुश्किल प्रक्रिया भी है कि जिसमें आप अपने को रोके रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हों, मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते
0: और वापस उस चित्र में, उस यात्रा में वापस लौटना भी मुश्किल होता है
1: वो
0: जी। इस पूरी बातचीत में अखिलेश जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी ही प्रयोगशील बातें बताई हैं, और इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। इसके अंतर्गत हमने सुनी मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के

श्रोताओं नमस्कार, FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। इस समय शाम के 6 बज रहे हैं। मैं हूं आपकी रेडियो सहेली चुमकी। हम सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं और आरंभ करते हैं आज की हमारी दूसरी सभा।

6:05 पर आप सुनेंगे स्थानीय भाषाओं के गीतों के कार्यक्रम। सबसे पहले सुनेंगे माड़ भक्ति गीत जोसेफ लुंगथांग और उनके साथियों के आवाज में। जैमी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे जैमी लोकगीत अबियातरबे जैमी और उनके साथियों के आवाज में। समय रहेगा 6:25। शाम के 6:45 पर आप सुनेंगे संध्या रांचोलिक बातोरी आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से। डिमासा लोकगीत आप सुन पाएंगे किमली खोजाई और उनके साथियों के आवाज में। समय रहेगा 7:00।

7:20 पर आप सुनेंगे कार्बी कार्यक्रम के तहत कार्बी लोकगीत मैन सिंह रोंगहांग और उनके साथियों के आवाज में। कुकी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे कुकी आधुनिक गीत हैंग तेंग चांगसंग और उनके साथियों के आवाज में। समय रहेगा 7:40। 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरो की रंगोली। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। इसके तुरंत बाद समाचार संध्या आप सुन पाएंगे 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात के 9:00 आप सुन पाएंगे नेपाली गीतों का कार्यक्रम।

FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए शुरू करते हैं स्थानीय भाषाओं के गीतों के कार्यक्रम। सुनते हैं मार कार्यक्रम के तहत मार लोकगीत जोसेफ लुंगतंग और उनके साथियों के आवाज में।

आप सुन रहे थे मार लोकगीत जोसेफ लुंगताओ और उनके साथियों के आवाज में। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए आगे सुनते हैं जैमी लोकगीत एबिया तरबे जैमी और उनके साथियों के आवाज में।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे सौंधियार आंचलिक बातोरी आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं डिमासा लोकगीत खिमली खोजाई और उनके साथियों की आवाज में।

아이씨 고리네 치다라 라시 하자르바뎀 피쿠바 아이보롱 방보 호클라야 라시 방보 호클라야 라야 라이타오 타오

하얗게 니장 햄발라에 무게 니장 라이발라에 야 찾아오.

还当些芝麻包馅呢，倒些盖麻包馅呢，还打面擦玻璃呀，倒两下可以还点了，打还点吧。

하루를 성사 많이 바니시 와용조 성사 많이 바니시 해와용조 저 빌리 그라키 마코리니 그랑장 아야

0: 还没咱说啦中啦我用车送把你还住的叫把你个老宝把车。
1: 还没咱说过咱不咱拍戏咱给人咱不

아이고, 암사길래 와이다낭, 무렴사길래 지다낭, 당이지바 칼리하, 다후이가임바 칼리하. 아이바.

0: श्रोताओं आप आनंद ले रहे थे डिमासा लोकगीत का खिमले खोजाई और उनके साथियों की आवाज में। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अभी आपको सुनवाते हैं कार्बी लोकगीत मैनसिंह रोंगहांग और उनके साथियों की आवाज में।
1: मेरी आजा रोंग चेवेक फांग वारदोंग नेनो पाक चूलोन पेन फूरी आ रोंग रोंग

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्बी लोकगीत मैनसिंह रोंगहांग और उनके साथियों की आवाज़ में। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी आपको सुनवाते हैं कुकी आधुनिक गीत हैतनेंग चांगसन और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे कुकी आधुनिक गीत का हेतनेंग चांगसन और उनके साथियों की आवाज़ में। यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी सुनते हैं कार्यक्रम सिरों की रंगोली।

भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम सुरों की रंगोली का। यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी गीत।

0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम की अगली गीत पेश है मिक्का सिंह की आवाज में।
1: रोशनी है तो रोशनी, चाशनी है तो चाशनी।

0: के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
2: जो भारतीय नागरिक वर्तमान

0: में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
2: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
1: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
3: We had 26 delegates from
4: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
5: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना NDRF सिविल डिफेंस फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
6: I also refer to the unwarranted...
7: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
6: It has always been, is and will remain so.
1: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ति दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
8: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के

0: बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 रुपए पर बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओ, आप सुन रहे थे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है।
3: हेलो हाफ लॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग। हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं। और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर। नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग।

0: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे कुछ नेपाली आधुनिक गीतों का। यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है।
1: आपके गीत दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आइए अभी आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम चित्रगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्यार भरी कुछ गीते। पहला गीत पेश है लता मंगेशकर की आवाज में।

श्रोताओं, प्यार में लोग अपनी हदें भूल जाते हैं, लेकिन दोस्ती वो खूबसूरत रिश्ता है जो हर हद में रहकर भी निभाया जाता है। और अगला गीत इसी दोस्ती के नाम है।

श्रोताओं, तुम्हारी सांसों की खुशबू में महक जाऊं मैं, तुम्हारी सांसों की खुशबू में महक जाऊं मैं, पास आओ तो इस तरह पिघल जाऊं मैं। और हमारा अगला गीत पेश है लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद ले इस रोमांटिक गीत का।

श्रोताओं, इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र। इस समय रात के 10 बज रहे हैं। समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे यानी चुमकी को दीजिए अनुमति। सुप्रभात, जय हिंद।